सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं और हमारी आज की प्रसारण सेवा अब आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब श्रोता सुने समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया

0: दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए ही परवरदिगार ने बनाया है। उन्हीं में मैं भी हूं। उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर ये कृपा की और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ तो मैं उसकी महिमा का ही गुणगान कर रहा होता हूँ। ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम हैं जो कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोटि जनों को कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए जिससे ये चारों ओर अच्छाइयां एवं प्रकाश फैला सके। शॉटर्स हाई स्कूल के मेरे एक शिक्षक आया दुरै सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी। आया दुरै सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए, इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ानें भरूंगा। और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। जीवन में खुशी, संतुष्टि और सफलता हमारे सही चुनाव पर निर्भर करती है। अपनी प्रगति को परखना बड़ा मुश्किल होता है। जीवन के इम्तिहान में पर्चा भी खुद बनाना होता है और उत्तर भी खुद ही लिखने होते हैं, यहां तक कि उन्हें जांचना भी खुद ही को होता है। जब आप स्वयं अपनी इच्छा एवं जिम्मेदारी से कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तब आप एक इंसान बन जाते हैं। 3 बड़े वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष, रक्षा शोध एवं परमाणु ऊर्जा में मुझे काम करने का महान अवसर मिला है। इन 3 प्रतिष्ठानों में एक जो खास बात है वो ये कि अपने मिशनों में काम के दौरान इन वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को असफलता का डर कभी भी नहीं लगा। असफलता के साथ उनके भीतर सफलता के बीच

0: भी रहे हैं। इसी से कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी सामने आई है। मैं पूरे उत्साह से उम्मीद और प्रार्थना करता हूं अंततोगत्वा हमारा राष्ट्र एक मजबूत, खुशहाल और विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार। वाचन स्वर था प्रेम कुमार सडाना का। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना मातृवंदन के साथ।

समूह स्वरों में गाए इस मातृवंदन के बाद आइए अब आरंभ करते हैं प्रभु आराधना, जो कठिन विपदाओं से हमें बचाते हैं, जो समृद्धि के देवता हैं, जो सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, जो अपनी शरण में आए भक्तों के सभी कष्टों को मिटा देते हैं। ऐसे गजानन गणपति को हमारा प्रणाम है। हे प्रभु, हम इस दिन आपका नमन कर रहे हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए और हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए।

शिव शंभू दिगंबर हैं, यानी आकाश ही उनका वस्त्र है। भोलेनाथ भावना के भूखे हैं, जो उन्हें भावना से पूजे वो उनका आशीर्वाद जरूर पाते हैं। जो भी भोले शंकर की प्रार्थना में अपने आप को लीन करते हैं, उनके भंडार में, उनके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रहती है।

इस धरती के कण कण में ईश्वर का वास है। समय कोई भी हो, सुमिरन में श्रद्धा रखिए, क्योंकि प्रभु एक बार जिसके हो गए उस भक्त का साथ वे जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते। प्रभु किसी एक के नहीं है, सारे संसार के हैं और सारा संसार उनका है।

इसी मसीह भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए। बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सबका अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंडी के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का।

प्रातः 7:30 पर शैल संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे दीपा मेहरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहता है प्रातः 8:30 पर। सुबह 9:00 श्रोता सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता। डॉक्टर राजेश तिवारी से विकास चमोली की बातचीत होगी, विषय रहेगा गर्मियों में आंखों की देखभाल। सुबह 10:35 पर लोक संगीत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। और सुबह 11:00 का समय रहेगा आपके फरमाइश के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का।

दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे अन्निका शर्मा के गाए भजन। दोपहर 12:30 पर घर गृहस्थी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी वार्ता सुश्री मेघा कोठियाल से। विषय रहेगा करें योग रहें निरोग। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 1:23 पर। सैनिक साथी फिल्म संगीत सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर। गाने नए तराने श्रोता सुनते हैं दोपहर 3:02 पर।

आज अपराह्न 4:02 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में श्रोता आनंद लेंगे अशोक राय के गाए राग किरवानी में सरोद वादन का। अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में आज की अभिनेत्री होंगी सुरैया।

सायंकालीन सभा में सायंक 5:10 पर युवा साथी सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। सायंक 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत में श्रोता सुनेंगे श्री योगेंद्र सिंह रावत से विनय ध्यानी की बातचीत। विषय रहेगा पर्यटन और स्वरोजगार।

सायं 7 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में किसान साथी सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत। सायं 7:50 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति होगी ज्ञान दर्पण।

0: आज रात्रि 8 बजे श्रोता सुनेंगे हिंदी वार्ता डॉक्टर श्री ब्रजेश यादव से। विषय विष्णु प्रभाकर के साहित्य में राष्ट्र प्रेम और मानवीयता। समय याद रखिएगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:10 पर सरकार के 12 साल ये कार्यक्रम आप सबके लिए। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे होगा आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 50वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुं अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तर प्रदेशस्य गौतम बुद्ध नगरस्य जेवर नगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः

0: आसीत्। लखनऊ नगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्व वायु दिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायु परिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जून मासस्य 15 दिनांके अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवा राज्ये 26,000+ वैश्विक वायु दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20x20 विश्व चषक क्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है।

बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैसे कहूं फिल्म में अभी आप मोहम्मद रफी को सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल थे और एसडी बर्मन का संगीत।
1: योर करियर विद यूपीईएस इंडियाज़ एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी चूज फ्रॉम

0: plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम का ये गीत सुर संगम फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में, बसंत देव के बोल है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सुर संगम फिल्म के इसी गीत के साथ चित्ररागिणी अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। पहले मुख्य समाचार। अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार सहित प्रदेश के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्थाओं के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से राज्य के विकास के लिए सुझाव देने का आह्वान किया। और नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीम करौरी महाराज के स्थापना दिवस पर आज मेले का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात सहित अन्य सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए। और अब समाचार विस्तार से। आज अधिक मास की सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार सहित प्रदेश के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर गंगा स्नान, दान पुण्य और पितरों के तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात संचालन और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नियंत्रण कक्ष से घाटों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी की जा रही है। गंगा घाटों पर जल पुलिस और गोताखोरों की विशेष टीमें भी तैनात हैं। इसके अलावा विभिन्न मार्गों पर यातायात डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सभी आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार पारितंत्र को दर्शाती है।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने कल उधम सिंह नगर जिले के खटीमा के बंडिया में भगवान शंकर और हनुमान जी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराएं तथा धार्मिक आस्थाएं राज्य की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी समृद्ध विरासत से जुड़ी रहें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय 416 पदों की पुनर्परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण और निर्विवाद रूप से संपन्न हुई। परीक्षा में 83,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया और कुल उपस्थिति 72.62% दर्ज की गई। आयोग के अध्यक्ष GS मार्तोलिया ने बताया कि ये परीक्षा पूर्व में निरस्त की गई थी, इसलिए इसकी शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना आयोग के लिए बड़ी चुनौती थी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे, जैमर और AI आधारित कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी रखी गई। परीक्षा की व्यवस्थाओं पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी लगातार नजर बनाए रखी। पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी ने विद्यार्थियों के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के युवाओं को कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। संस्थान के निदेशक डॉ BK बंगा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग के साथ साथ कला वर्ग के विद्यार्थी भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि बीसीए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को रोजगार परक तकनीकी कौशल प्रदान करेगा और उच्च शिक्षा, उद्यमिता और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध कराएगा।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से उत्तराखंड के विकास में अपने अनुभव, ज्ञान और सुझावों के माध्यम से सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों से सकारात्मक सुझाव प्राप्त कर नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्र और समाज को दिशा देने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके विचार आने वाली पीढ़ियों के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध जन समाज के ओपिनियन मेकर्स होते हैं और उनके सुझाव राज्य के विकास की मजबूत आधारशिला बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में देश ने सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीम करौरी महाराज के स्थापना दिवस के अवसर पर आज मेले का आयोजन किया गया है। मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मेले को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले कल नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, यातायात तथा अन्य यात्री सुविधाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर परिसर, पार्किंग स्थलों, बैरियरों और प्रमुख मार्गों पर बम निरोधक दस्ते द्वारा नियमित जांच कराने तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। मेले के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है। संवेदनशील और संकरी मार्गों पर भारी वाहनों के संचालन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मेला क्षेत्र में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए इलाकों को 4 सुपर जोन और 14 जोन में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इससे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे होगी। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की द्वितीय चीफ जस्टिस कप गोल्फ टूर्नामेंट का समापन कल पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। नैनीताल स्थित लोकभवन गोल्फ कोर्स में आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सहसपुर में युवक की हत्या के मामले में बढ़े तनाव की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण लिखता है, भीड़ ने आरोपित का घर जलाया, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक में शामिल करते हुए लिखा है, प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्र और समाज की दिशा को दिशा देने वाली शक्ति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार सहित प्रदेश के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्थाओं के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से राज्य के विकास के लिए सुझाव देने का आह्वान किया। और नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीब करौरी महाराज के स्थापना दिवस पर आज मेले का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा यातायात सहित अन्य सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं दीपा मेहरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर महेशानंद, तबला पर हैं अमित कुमार, हुड़का पर प्रवीण कुमार, बांसुरी पर सौरभ कुमार और हारमोनियम पर हैं अनुज।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: शहर संगीत कार्यक्रम में इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं दीपा मेहरा की गाई कुमाऊनी लोकगीत।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: शैल संगीत कार्यक्रम में इस समय हमारे श्रोता आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं और आज की कलाकार हैं दीपा मेहरा। आप इनके गाए कुमाऊनी लोकगीत सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, दीपा मेहरा के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ शैल संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर महेशानंद, तबला पर अमित कुमार, हुड़का पर प्रवीण कुमार, बांसुरी पर सौरभ कुमार और हारमोनियम पर थे अनुज। इसी के साथ शैल संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुने समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: घर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुस जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुस जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुस जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
6: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
5: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
7: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
5: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है।

0: के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रूपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रूपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह

0: रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
3: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में

नमस्कार देहरादून। आज के अंक के साथ आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो सखी श्रुति शर्मा। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओ, आज है 15 जून। अखबार की सुर्खियों और इतिहास के पन्नों के साथ आपसे होगी चर्चा। श्रोताओ, जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिनकी मौजूदगी मकान को घर और घर को परिवार बना देती है, जिनका आशीर्वाद हमारी हर राह को आसान बना देता है, उस पूंजी की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। उन्हें भी सहारे और सम्मान की जरूरत पड़ती है। वो हैं हमारे घर के बुजुर्ग, जिनका अनुभव समाज की अमूल्य धरोहर है। श्रोताओ, आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार अवेयरनेस दिवस, जिसका उद्देश्य है बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना और भावनात्मक और समाज को उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित करना, पीढ़ियों के बीच विश्वास और अपनेपन को मजबूत कर सुरक्षित स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने देने का संदेश समाज में प्रसारित और प्रचारित करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। वैसे तो इसके लिए हमें किसी दिवस का इंतजार नहीं करना है, बस जरूरत है तो थोड़ा सा समय निकालकर अपने बड़ों की बातों को सुनना, उनके साथ समय बिताना, उनके स्वास्थ्य और जरूरतों का ख्याल रखना, उनकी आर्थिक जरूरतों को भावनात्मक रूप से पूरा करना और उनके अनुभवों और ज्ञान को सम्मान देना। बस इन छोटी छोटी बातों से हम उन्हें खुश और संतुष्ट कर सकते हैं। तो आइए आज ये प्रण लेते हैं कि आंगन में खड़े इस वट वृक्ष को, जिसकी छाव में पीढ़ियां पली हैं, हम उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन सम्मान, समय और अपनापन देंगे, क्योंकि वो अमूल्य हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, आइए जानते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा में विकास और सुशासन की नई इबारत लिखते हुए प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे उत्तराखंड को देश का नंबर

राज बनाने के लिए महासंकल्प में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान उफनती नदियों से के संभावित रौद्र रूप को देखते हुए सिंचाई विभाग ने प्रभावी कार्य योजना तैयार की। इसके तहत राज्य की प्रमुख 13 नदियों के जल स्तर पर 25 स्थानों से 24 घंटे पैनी नजर रखी जाएगी, जिससे कि संभावित खतरे से आमजन को समय रहते सचेत किया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने महिला मोर्चा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मातृशक्ति को सक्रिय भागीदारी और आशीर्वाद से भाजपा अधिक सशक्त होकर जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सैन्य बाहुल उत्तराखंड के निवासी सैन्य वोटरों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। निर्वाचन विभाग ने कहा कि सर्विस वोटर श्रेणी में पंजीकृत सैन्य कर्मियों का SIR नहीं किया जाएगा। उनका नाम पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में पहले की तरह सर्विस वोटर श्रेणी में ही बना रहेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए नाइट स्टे की सुविधा आज सोमवार से बंद कर दी जाएगी। श्रोताओ, आज बाबा नीम करोली महाराज के हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर स्थित कैंची धाम का स्थापना दिवस है और आज सोमवार को लगने वाले मेले में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रोताओ, आज एक खुशखबरी भी है हमारे देश के लिए। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। ये भारतीय बेटियों की पाकिस्तान पर इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी और कुल 9 मैचों में 7वीं जीत है। साथ ही तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में भारत ने रविवार को 2 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। ओलंपियन धीरज बीमा देवरा और कुमकुम मुहोड़ की जोड़ी ने ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर रिकवर मिश्रित इवेंट का स्वर्ण पदक जीत लिया है। यूं ही हमारे ये खिलाड़ी देश का मान और सम्मान बढ़ाते रहें।

श्रोतो, आइए अब जानते हैं आज के इतिहास की बातें। श्रोतो, देश का इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, वरन विचारों, मूल्यों और जागरूकता को आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन का भी आधार है। तो आइए जानते हैं आज के इतिहास में क्या कुछ था खास। 15 जून 1908 को कलकत्ता में शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 15 जून 1947 को भारत के विभाजन की ब्रिटिशर्स ने जो योजना बनाई थी उसे नई दिल्ली में स्वीकार किया गया था। भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय आज ही के दिन 2006 में लिया था। आज के दिन 1929 को मशहूर अभिनेत्री सुरैया जी का भी जन्म हुआ था। 1917 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन का भी जन्म हुआ था। प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार पद्म भूषण से सम्मानित देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म भी आज ही के दिन 1899 में हुआ था। श्रोताओ, सुरैया जी के विषय में हमने आपसे कहा कि आज उनका जन्मदिन हुआ था, तो क्यों ना उनका एक गीत आपको सुनाया जाए उन्हीं की अभिनीत फिल्म से। फिल्म थी अनमोल घड़ी।

0: Future-proof your career with UPES Dehradun, India's AI-first university. Choose from 100+ AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Join 60,000-strong UPES community working with industry giants like Apple, Google, and Microsoft. Application close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, आपसे जानकारी साझा करते हैं। हर वर्ष 15 जून को मनाए जाने वाले ग्लोबल विंड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पवन दिवस की। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है पवन ऊर्जा के महत्व, उसकी शक्ति और इससे जुड़ी संभावनाओं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में इसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। पहला पवन दिवस 2007 में मनाया गया था। इस वैश्विक पवन दिवस की 2026 की थीम है अवर विंड अवर कम्युनिटी, यानी हमारी हवा हमारा समुदाय। पवन ऊर्जा आपके हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। ये दिवस दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हमारा भारत पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन राज्यों में पवन ऊर्जा परियोजनाएं संचालित हो रही हैं और लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। ये ऊर्जा स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे पर्यावरण को संरक्षण मिलता है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलते हैं। श्रोताओं, जब हवा की ताकत से रोशनी जलेगी, तब विकास, प्रकृति साथ साथ चलेंगे। हवा का हर झोंका सिर्फ ठंडक ही नहीं लाता, वरन स्वच्छ ऊर्जा हरित भविष्य और सतत विकास का भी संदेश देता है। यही बात ये गीत भी आपसे कर रहा है। सुनिए ये प्यारा सा गीत।

तो प्रकृति का हर दिन रंगों से एक नई तस्वीर बनाता है, बस उसे देखने और संजोने वाली नजर चाहिए। श्रोताओं, हर वर्ष आज के दिन को नेचर डे फोटोग्राफी के रूप में भी मनाया जाता है, ताकि लोगों को प्रकृति की सुंदरता, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर प्रकृति के अनमोल दृश्यों को कैमरे के माध्यम से सहेजने के लिए प्रेरित किया जा सके। श्रोताओं, प्रकृति धरोहरों को तस्वीरों के माध्यम से दस्तावेज के रूप में संजोकर नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़कर उसका सम्मान करना भी हमारा ही कर्तव्य है। हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत, हर पक्षी एक ऐसी कहानी है जिसे कैमरा शब्दों के बिना भी बयां कर देता है। तो आइए इस नेचर फोटोग्राफी डे पर सिर्फ सुंदर तस्वीरें ही नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का भी संकल्प लें, क्योंकि जब ये प्रकृति मुस्कुराएगी तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रंगों भरी इस दुनिया को देख पाएंगी। और आपने फील भी किया होगा कि जब हम प्रकृति को करीब से देखते हैं तब समझ आता है कि धरती की सबसे खूबसूरत कला किसी कलाकार ने नहीं वरन प्रकृति ने खुद बनाई है। इसी बात को चरितार्थ करता ये गीत आप सबके लिए।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं, पेश हैं सदाबहार फिल्मी गीत। श्रोताओं, कभी कभी किसी गीत की एक पंक्ति ही हमें खिलते फूलों की खुशबू, चहकते पंछियों की धुन और एक नई सुबह की ताजगी का एहसास करा जाती है। आज के कार्यक्रम का पहला गीत भी इसी भावना को जगा रहा है, जिसमें लता जी की सुरीली आवाज कानों में घुल सी जा रही है। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म हीरो।

0: जब आंखें खुले और सामने खुली हुई बाहर दिखाई दे तो बस यही लगता है कि मानो हर पत्ता, हर फूल, हर हवा का झोंका जीवन में नई उम्मीद लेकर आया हो, क्योंकि हर दिन नई सुबह अपने साथ लाती है नए अवसर, नई ऊर्जा और प्यारी सी मुस्कान। और हमारे श्रोताओं का प्यार तो हमारे साथ है ही, और हम भी उनके लिए लाते हैं गीतों की बहार। ऐसा ही एक गीत एक नजर फिल्म से आप सबके लिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, मसरूर सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: ये बर्बादी का रास्ता है शबनम,
2: लेकिन बहुत हसीन है अम्मी,
1: इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है।
2: खुदा करे ऐसी मौत जिससे जिंदगी मिले सर आंखों पर।
1: मगर तुम्हें इस रास्ते पर जाने कौन देगा?
2: मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन?
1: मैं रोकूंगी, मैं, अमीना बाई।
2: अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता।
1: बेहुदा नालायक बदमाश, इस दिन के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान
2: डालो, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं।

तो रिश्तों की खूबसूरती बड़े बड़े वादों में नहीं है, बल्कि हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने में है। जहां दो लोग विश्वास, सम्मान और अपनापन साझा करते हैं ना, वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हीं वादों को पिरोता कार्यक्रम का ये अगला गीत अमृत फिल्म से, आवाज अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की। आनंद बख्शी के लिखे शब्दों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: The all-new Nissan Revive अब CNG में
3: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
2: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी Nissan डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
1: संपर्क करें पाल Nissan शोरूम हल्द्वानी। मोबाइल नंबर 8477008200।
4: श्रोताओं, पुराने सदाबहार गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इनमें प्रेम क्षणिक आकर्षण भर नहीं है, वरन जीवन भर निभाए जाने वाला वचन है। जब दिल पूरी सजगता और तन्मयता से किसी को अपना मान ले तो बस हर शब्द वसीयत बन जाता है और दिल कुछ यूं अपने एहसासों को व्यक्त करता है। आनंद बख्शी के बोल सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज मोहम्मद रफी की। फिल्म नाइट इन लंदन

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Join 60,000 strong UPES community working with industry giants like Apple, Google, and Microsoft. Application close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सेहरा फिल्म से, और ये गीत ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से सजा हुआ तो है ही, साथ ही इस गीत में इतनी खूबसूरती और सादगी है कि मन की सहज सी अभिव्यक्ति को बड़ी सरलता से व्यक्त कर जाती है। इस गीत को सदाबहार बना रही है, निश्चित ही आप इस गीत में ज़रूर खो जाएंगे। हसरत जयपुरी के बोल और संगीत से सजाया है रामलाल ने।

यादगार फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। श्रोताओं, सदाबहार गीतों में कुछ नगमे ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुने तो लगता है शोर नहीं है, बस शांत नदी की तरह हैं, मन को जीवन को सींचते जा रहे हैं। आप भी सुनिए हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत। अख्तर रोमानी के बोलों को संगीत से सजाया है कल्याण जी ने, आनंद जी ने, स्वर दिया है लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी ने।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: इसी गीत के साथ श्रोताओ सदाबहार फिल्मी गीत अब यहीं पर संपन्न होते हैं। श्रोताओ आपको बता दें आज अपराह्न 4:02 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे अशोक राय से राग किरवानी में सरोद वादन। अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में आज की अदाकारा होंगी अभिनेत्री सुरैया। सायं 5:45 पर ग्राम जगत कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे भेंट वार्ता। श्री योगेंद्र सिंह रावत से विनय ध्यानी की बातचीत, विषय रहेगा पर्यटन और स्वरोजगार। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राजेश तिवारी से विकास चमोली की बातचीत और बातचीत का विषय है गर्मियों में आंखों की देखभाल।
2: सेहत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश तिवारी, आप आई स्पेशलिस्ट हैं और आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में आंखों की समस्या के बारे में। जी हाँ, आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे गर्मियां आती हैं वैसे वैसे आंखों की जो समस्याएँ हैं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो क्यों ये समस्याएं होती हैं, इन पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
3: धन्यवाद चमोली जी, आपका बहुत बहुत आभार हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम गर्मियों में आँखों की समस्या पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि किस तरह की समस्याएँ आमतौर पर गर्मियों में आँखों में देखी जाती हैं।
3: गर्मियों में आँखों में जो भी समस्याएँ देखी जाती हैं
2: जी,
3: उनका मूल कारण है तेज धूप, धूल, पसीना और डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी
2: जी।
3: इसके कारण ही सारी समस्याएं आती हैं। तेज धूप होने के कारण से गर्मी में बैक्टीरिया और वायरस यानी कीटाणु जो हैं ये तेजी से फैलते हैं
2: जी।
3: इनको अच्छा वातावरण मिलता है, वो जो गर्मियों में तापमान अधिक होता है उस तापमान में इनका विकास अधिक होता है
2: जी।
3: और पसीना, गंदे हाथ, स्विमिंग पूल का क्लोरीन, ये सब भी मिलकर बैक्टीरिया और वायरस इनके पनपने में सहायक होते हैं
2: जी।
3: और दूसरी चीज होती है कि ड्राई आई सिंड्रोम, गर्मी में जो गर्म हवा होती है और एसी का प्रयोग किया जाता है और तेज धूप में निकलना पड़ता है और कम पानी पी रहा है यदि कोई व्यक्ति, तो उससे हमारे आंसू जल्दी सूख जाते हैं और आंसू सूखने के कारण से आंखों में जलन और रेत जैसा अनुभव होना, धुंधलापन दिखाई देना, आंख में भारीपन अनुभव होना, इस प्रकार के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। और गर्मियों में आंख में इन्फेक्शन के कारण ही कुछ लोगों में स्टाई या गुहेरी या अंजनियारी ये भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पसीने और धूल से पलकों के तेल ग्रंथि के छिद्र बंद हो जाते हैं
2: जी,
3: और एक गांठ निकल आती है पलकों के किनारे, जो गांठ दर्द वाली गांठ होती है। इसके अतिरिक्त एक फोटोकेरेटाइटिस भी रोग है जो तेज धूप की अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है। इससे कॉर्निया का सनबर्न हो जाता है, इससे आंखों में तेज दर्द होता है, आंखों से पानी निकलता है, रोशनी में चुभन लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे आंख में रेत पड़ गया हो। और कुछ लोगों को गर्मी में जो धूल के कण हैं उसके कारण एलर्जी भी हो जाती है और पराग कणों के कारण भी एलर्जी होती है। और डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन अर्थात पानी की कमी, तो गर्मियों में जो पानी की कमी होती है उससे शरीर में तो थकान होती है और आंख भी शरीर का अंग है, शरीर की मांसपेशियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं, उन मांसपेशियों में भी थकान हो जाती है और आंख के नीचे बहुत गहरे रंग के सर्किल भी आ जाते हैं। तो यही मुख्य रूप से
2: जो समस्याएं हैं वो इन दिनों देखी जाती हैं।
3: देखी जाती
2: है जी डॉक्टर साहब। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग धूप से बचने के लिए काला चश्मा लगा लेते हैं, तो ये जो चश्मा है इसको खरीदते समय कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है।
3: चश्मे में वैसे तो सस्ता चश्मा जो है वो भी आंखों के लिए लाभकारी है। अच्छा। उससे आंखों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। किंतु यदि अच्छी गुणवत्ता का चश्मा जो कि अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट किरणों को यानी पराबैंगनी किरणों को रोकने में सक्षम है, तो वो चश्मा अधिक लाभकारी होगा
2: जी। इसके अलावा और किस तरह की सावधानियां हमें रखनी है जैसे हम धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं?
3: जी, सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गर्मी में यदि बाहर निकल रहे हैं तो मैंने जैसे बताया पराबैंगनी किरणों को रोकने वाला चश्मा जो है वो लगा के निकले। उसके अलावा गर्मियों में जैसे स्विमिंग, तैराकी के लिए बच्चे बहुत जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, तो तैराक लोगों को भी चश्मा पहनना चाहिए जिससे पानी आंख में नहीं जाएगा और उस पानी में जो क्लोरीन होती है, और बहुत लोग जो पानी में नहाते हैं उसके कारण भी जो जीवाणु आ जाते हैं क्योंकि सफाई का वो स्तर हर व्यक्ति में नहीं होता है, तो गंदगी के कारण भी जो पानी में इन्फेक्शन हो जाता है, जो संक्रमण होता है पानी के कारण से, उससे भी बचा जा सकता है यदि स्विमिंग गॉगल्स का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा हाथों को धोना चाहिए क्योंकि हाथों में भी

0: गर्मी के मौसम में पसीना आता है और हम इधर उधर हाथ रखते हैं तो हाथ गंदे रहते हैं, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र से यदि देखा जाएगा तो उन हाथों में बहुत सारे कीटाणु लगे रहते हैं। उन कीटाणुओं से ही यदि हम आँख को साफ करते हैं या आँख पर गलती से भी हाथ लगाते हैं तो आँख में इन्फेक्शन या संक्रमण की बहुत ज़्यादा जो है संभावना रहती है। और अपने पास स्वच्छ तौलिया या रुमाल इत्यादि रखना चाहिए, जिससे बार बार यदि पसीना आ रहा है तो आप उसको पोंछ लें, क्योंकि अगर पसीना भी आँख के अंदर जाएगा तो उससे आँख में इरिटेशन होगा। इरिटेशन होने के कारण फिर आँख में हाथ जाएगा और वो गंदा हाथ जो है फिर पुनः संक्रमण को बुलावा देगा।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि छोटे बच्चों की हम बात करें तो ये ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और बच्चे बाहर भी निकलते हैं खेलने के लिए, तो उनके साथ किस तरह की सावधानी पेरेंट्स को रखनी चाहिए?
0: जी, बच्चों में एक बात बता दूं कि एक एलर्जी जिसको वर्नल कंजंक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कटार का नाम दिया जाता है, वो भी इस मौसम में मार्च अप्रैल से लेकर और जुलाई के मौसम, जुलाई अगस्त के मौसम तक वो एलर्जी बहुत देखने को मिलती है, जिसमें बच्चे रबिंग करते हैं,
1: जी जी
0: आँख
1: जी
0: को मलते बहुत हैं। तो उसके लिए चिकित्सक के पास, जिस बच्चे को भी इस प्रकार की प्रवृत्ति है उसको चिकित्सक के पास ले जाकर उसकी पहले से ही दवाई करवा देनी चाहिए, ताकि वो बच्चे आँख को मले नहीं, क्योंकि आँख को मलने से, बार बार मलने से एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं किराटोकोनस।
1: जी
0: किराटोकोनस में आँख का जो कॉर्निया है, ये जो साफ भाग है, जैसे कि घड़ी में शीशा लगा होता है, उसी प्रकार का जो आँख में भाग है इसको कॉर्निया बोलते हैं, ये कॉर्निया कमजोर पड़ जाता है, इसके धागे एक प्रकार से घिस जाते हैं।
1: जी
0: तो बाहर जाते समय चश्मे का प्रयोग बच्चों को भी करना ही चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं कि आई फ्लू की भी समस्या बढ़ जाती है।
0: जी, आई फ्लू का अर्थ है संक्रमण, इन्फेक्शन,
1: जी
0: और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसे जो भी इन्फेक्शन वाला व्यक्ति है उसको स्वयं ही चाहिए कि समाज के हित में वो समाज में ना जाए, बाहर ना आ जाए, अपना आवागमन बाहर ना रखे, घर के अंदर ही रहे, है ना,
1: जी
0: यानी कि आइसोलेशन रहे, बिल्कुल एकांत में घर में रहे,
1: हम
0: और वो ऐसे कमरे में सोए जिसमें और व्यक्ति नहीं सो रहे हैं। और यदि किसी कारण से उसको बाहर जाना पड़ता है तो उसको ऐसा चश्मा पहनकर जाना चाहिए जो स्विमिंग वाले यानी तैराक जो है, पानी में तैराकी के समय जो पहनते हैं, जो चारों तरफ से बंद रहता है,
1: जी
0: ताकि उसकी आंख से भी जीवाणु बाहर न जा सके।
1: जी आंखों में जैसे गर्मियों में लालिमा भी देखी जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो प्राथमिक उपचार की हम बात करें, अगर व्यक्ति को इस तरह के कुछ लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए?
0: सर्वप्रथम तो स्वच्छ जल से आँख को कई बार धोना चाहिए। स्वच्छ जल से मेरा मतलब ये है कि जो पानी फिल्टर किया हुआ हो, जो साफ किया हुआ पानी हो,
1: जी
0: उसी पानी से बार बार आँखों को धोने चाहिए। विशेष रूप से जब हम गर्मी से बाहर से घर में आते हैं तो आँख को धो लेना जो है अधिक हितकर है,
1: जी
0: अपने हित में है, उससे जो भी जीवाणु इत्यादि आँख के अंदर गए होंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा, बाहर से आने के बाद हम कुछ आइस क्यूब्स, बर्फ के कुछ टुकड़े जो है, गीले रुमाल में लेकर, सूती रुमाल में लेकर आंखों की सिकाई कर सकते हैं, उससे भी जो थोड़ी बहुत लालपन होता है, आंख में थोड़ी बहुत खुजली होती है, वो सब दूर हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारा स्क्रीनिंग टाइम भी बढ़ा है और
0: हाँ
1: अधिकतर टाइम में हम देख रहे हैं कि गर्मियों में हम एसी का भी प्रयोग करते हैं,
0: जी,
1: तो ऐसे में आंखों में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं?
0: ये एक अलग ही प्रकार का रोग मेडिकल साइंस में अब ये माना जा रहा है, जिसको कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम,
1: जी
0: इसका नाम दिया गया है। जब हम बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं तो एक स्वाभाविक सी बात होती है कि हम पलक कम झपकते हैं, और उस पलक कम झपकने से आंसुओं का जो उत्पादन है वो भी आंख में कम होता है, जिससे आंख में खुश्की आ जाती है,
1: जी
0: नमी का अभाव हो जाता है। तो इसके लिए एक तो 20-20-20 का रूल कहलाता है नियम, यानी हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन से अपनी दृष्टि हटाकर और दूर 20 फुट दूर पर किसी वस्तु की तरफ देखना चाहिए। दूसरी चीज, आर्टिफिशियल टीयर्स जो आ रहे हैं, जो कृत्रिम आंसू हैं, वो कोई भी कृत्रिम आंसू जो है
1: जी
0: वो दो दो तीन तीन घंटे बाद डालना ही चाहिए। और तीसरा, एंटी ग्लेयर वाले जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस हैं, जो आपकी आंख की रक्षा करते हैं, ऐसे चश्मे का प्रयोग, जो भी मोबाइल देख रहे हैं चाहे उनकी आंख में नंबर ना भी हो या दूसरा स्क्रीन यूज कर रहे हैं, दोनों के प्रयोग के समय पर वो चश्मा धारण करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, गर्मियों में हम देखते हैं कि मच्छर मक्खी हो या और भी तरह तरह की चीज आंखों में कई बार कुछ चला जाता है, और ऐसे में हम आंखों को मलने लगते हैं, तो क्या ये भी एक समस्या का कारण बन सकता है?
0: आंखों को अगर हम मलेंगे तो जो भी चीज आंख में गिरी है उसके कारण से जख्म बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
1: जी
0: तो इसलिए अधिक अच्छा ये होगा कि वहां मले नहीं। आपके पास अगर पानी की बोतल है, गर्मी में सभी पीने के लिए पानी की बोतल अपने पास रखते हैं, उसी पानी से आंख को बार बार धो लेना चाहिए। और रुककर यदि कोई अपने साथ है तो अपने साथ वाले से, यदि कोई और व्यक्ति जा रहा है तो उसको रोककर उससे अपनी आंख में जो भी पड़ा हुआ है उसको रुमाल के एक कोने से निकलवा लेना चाहिए, आंख की सफाई कर देनी चाहिए। पर आंख को मलना नहीं चाहिए, मलने से तो जख्म बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर जख्म बनेगा और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो नेत्रों की जो तो ज्योति है वो भी समाप्त हो सकती है इन्फेक्शन के कारण से।
1: जी डॉक्टर साहब, खान पान की क्या भूमिका रहती है?
0: अच्छे खान पान में सबसे पहले मैं बात करूंगा गर्मी के मौसम की, क्योंकि बात चल रही थी। पानी का सेवन जो है हमें 2 से 3 लीटर 4 लीटर पूरे दिन में करना चाहिए। और यदि किसी को बाहर ही रहना है ना, जैसे मजदूर हैं या इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं
1: जी
0: उनको तो डिहाइड्रेशन होता ही रहता है, तो उनको हमेशा अपने पास पानी रखना चाहिए। और ORS का जो घोल है वो उसमें पानी में मिला मिला कर बार बार लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो अमृत है गर्मी के मौसम में वो तो मैं कहूँगा कि पानी है।
1: जी
0: और इस प्रकार के जो फल गर्मी में प्रकृति ने दिए हैं, खरबूजा है, तरबूज है ना, विभिन्न प्रकार के फल और भी फल हैं जिनमें पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, या और कुछ नहीं तो नींबू की शिकंजी है, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। और भोजन तो सादा, बिल्कुल सादा ही होना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में यदि आप बाहर खाते हैं, होटलों में खाते हैं, ठेली वाला भोजन करते हैं, तो गर्मियों में पेट में इन्फेक्शन के भी चांस ज़्यादा होते हैं। पेट में इन्फेक्शन होगा तो उल्टियाँ होंगी, लूज मोशंस होंगे, लूज मोशंस होंगे, उल्टियाँ होंगी, फिर पानी की कमी हो जाएगी और विभिन्न प्रकार के सॉल्ट्स की यानी लवण की भी कमी हो जाएगी, और वो शरीर को प्रभावित करेगी। और आंख भी, क्योंकि शरीर का ही अंग है,
1: जी
0: इसलिए आंख भी उससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग बहुत ज्यादा चटपटा खाते हैं, मिर्च मसालों की हम बात करें तो क्या ये भी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है?
0: नहीं, सीधा सीधा तो कोई हानि इस प्रकार के भोजन से आंख को नहीं होती है, नेत्र दृष्टि को नहीं होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में कार्यक्रम में चलते चलते क्या सलाह आप हमारे तमाम श्रोताओं को देना चाहेंगे जिससे उनकी आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रहें?
0: सबसे बड़ी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये अंग्रेजी की कहावत है, यानी रोकथाम जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि रोग हो जाए और हम उसकी चिकित्सा करते रहें। भोजन का ध्यान रखना चाहिए, भोजन में हमें पर्याप्त मात्रा में हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए ताकि विटामिन ए मिले, और जब गाजर आ रही है तो गाजर का सेवन करना चाहिए, और अन्य भी जो धनिया है, पुदीना है, या साग सब्जियां हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनका सेवन हमको प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। और अपना जो भारतीय भोजन है वो अपने आप में औषधि का कार्य करता है, और भारतीय भोजन यदि हम ले रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो रोग हमसे दूर रहेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग घरेलू इलाजों में ही लगे रह जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने में देर कर देते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर?
0: देखिए, डॉक्टर के पास तो शीघ्र अति शीघ्र ही जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू इलाज भी यदि कोई वैद्य है, वैद्य के द्वारा दिया जा रहा है, तब तो हम एक बार को ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, वैद्य का बताया हुआ है, शिक्षित व्यक्ति है, वैद्य भी आयुर्वेद में प्रशिक्षित है, तो उसका बताया हुआ नुस्खा तो चलिए आप प्रयोग कीजिए अगर घरेलू भी बताया जा रहा है।
1: जी
0: लेकिन स्वयं आप न वैद्य बने ना चिकित्सक बने, आपके हित में यही है कि आप जो उस विषय का विशेषज्ञ है उसी के पास जाएं। देखिए, कहा गया है जिसका काम उसी को साजे।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर राजेश तिवारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज गर्मियों में आंखों की समस्या को लेकर आपके साथ हुई, आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी डॉक्टर राजेश तिवारी से विकास चमोली की बातचीत। बातचीत का विषय था गर्मियों में आंखों की देखभाल। इसी के साथ सेहत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब श्रोता सुने न्यूज़ हेडलाइंस।

0: के सुझाव देने का आह्वान किया। नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीब करौरी महाराज के स्थापना दिवस पर आज मेले का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात सहित अन्य सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। पौड़ी जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी ने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध वर्ग से आह्वान किया कि वे अपने अनुभव, ज्ञान और सुझावों से उत्तराखंड के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय 416 पदों की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निर्विवादित हुई। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने द्वितीय चीफ जस्टिस कप गोल्फ टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विद्यालय की ओर से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 94% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:02 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। गुनाह किए होते तो माफ भी हो जाते, गुनाह किए होते तो माफ भी हो जाते, खता तो हमसे बस ये हुई कि उनसे इश्क हो गया।

आशा फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, अनजान के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। श्रोताओ, न जाने जिंदगी के किस मोड़ पे हैं हम, न जाने जिंदगी के किस मोड़ पे हैं हम, तुम्हारी जरूरत भी नहीं और तुम्हारी कमी भी है। इन लाइनों को चरितार्थ करता ये गीत आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

अजनबी ही तो थे तुम पर ऐसा कभी लगा नहीं। अजनबी ही तो थे तुम पर ऐसा कभी लगा नहीं। तुमसे बातें जो शुरू हुई तो फिर तुमसे ज्यादा कोई अपना लगा नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत, स्वीकार किया मैंने, फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, निदा फासले के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

तुम समझे ही नहीं कभी हमारे लफ्जों की गहराई को, तुम समझे ही नहीं कभी हमारे लफ्जों की गहराई को, हमने वो हर लफ्ज कह दिया जिसका मतलब मोहब्बत था। कार्यक्रम का ये गीत छोटी सी मुलाकात फिल्म से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: अमर प्रेम फिल्म का गीत अभी आप किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकल्प पूर्ण होने पर खटीमा पूर्णागिरि मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखंड के निर्माण के लिए सभी नागरिक घर मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लें और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही एक जन आंदोलन का रूप ले सकते हैं। कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम में कपाट खुलने के साथ ही मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। मेले के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, यातायात समेत अन्य यात्री सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम करवाना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं कुमाऊं मंडल की पुलिस महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती यातायात व सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। मंदिर परिसर, पार्किंग स्थलों, बैरियर और प्रमुख मार्गों पर बम निरोधक दस्ता BDS लगातार चेकिंग भी कर रहा है। HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित 9 जिलों में 94% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे ने बताया कि विभिन्न कोर्सों के लिए 8,257 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने बताया कि परीक्षा देहरादून, हरिद्वार, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल, गोपेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में आयोजित की गई। आज ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या है। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान, दान व पितरों के तर्पण का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या पर्व पर स्नान के लिए हरिद्वार समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही, वाहनों के संचालन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष से घाटों पर लगे सभी CCTV कैमरों पर लगातार नजर रखी गई है। घाटों पर जल पुलिस की विशेष टीम के गोताखोर भी मौजूद हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी ने विद्यार्थियों के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के युवाओं को कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। संस्थान के निदेशक डॉ BK बंगा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के साथ ही कला वर्ग छात्र भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि BCA पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल प्रदान करने के साथ साथ उच्च शिक्षा और स्टार्टअप के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neetnta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे होगी। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:35 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ रुहेलखंडी लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होते हैं। आज आपने इसमें सुने विविध कलाकारों के गाए लोकगीत।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, 11 बजे ही पेश है प्रोग्राम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम की सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर से मौसम में गर्मी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में गर्मी से आप बचाव के उपाय करें। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ आरंभ करते हैं आज का व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम और लेते हैं आप सभी की फरमाइश का पहला।

भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, फिल्म का नाम आपकी कसम।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान जय नारायण तरुण प्रतीक चौहान साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनि ज्योति प्रहलाद वर्मा राजेंद्र और साथ में मनहरन वर्मा और इसी गीत को सुनना चाह हैदराबाद किसरा मंडल से सदानंद गौड़ और सत्यमा गाँव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी अबरार हुसैन अल्ताफ हुसैन आशिक हुसैन और साथ में मुन्ना अंसारी गांव ही परसोगा तहसील औसा लातूर से उस्मान शेख फौजी सायरा बानू बाबा शेख सिमर और करिश्मा और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसानी उषा ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक डिंडोरी नासिक से विशाल गवली सोनाली समर्पण और भक्ति गवली आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युग सर में ये गीत फिल्म का नाम आराधना

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। साथ ही ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं, आप हैं जेलो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार बल्लू और साथ में तरुण यादव। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं जिन्होंने मैसेज लिखा है, उत्तर नगर दिल्ली से हैं जयराम खुरवाल अमल और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बख्तरिया, भूरा भोला परवीन रियांश और साथ में प्रतीक वाकतरिया। और इसी गीत को सुनना चाहा है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी अमरजी सुंदरलाल, योगेश दीपक और कुमारी पूजा। जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और साथ में नरगिस खातून। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप है वाराणसी शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वनी माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस अंकिता और अनिकेत चौहान। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आशा भोसले और मुकेश की आवाज में गीत फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो।

निरी जगील, मेहरनगर उमर खेड़ से अभिजीत गवांडकर, सरिता प्रिंस और एकांश गवांडकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवांडकर, सिद्धांत और साथ में इनके परिवारजन, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोम दत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक और साथ में अलौकिक चंचोलिया। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं पद्मा टाकी जेनेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्वी प्रखर, कुशल नीति, अश्विन मंगलाबेन और साथ में राजेंद्र जी शाह। और इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं सहारनपुर से ही सोनाली आशा और सुरेश नारंग, नई बस्ती गंज डिंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद औशिफ, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम अंसारी। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं लाल माता सुदामा गरटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। और ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान और जान अब्बान अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री और साथ में मेघा राशि। आप हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुकमणि साहिल और भारती बघेल। और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म का नाम सूरज।

कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काली, वंदना काली, आदेश कुमार काली, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश, पीपी बेदेही जोशी, हंसिका और साथ में कुमारी अंकिता। और ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल, महेश्वरी प्रभालिका, विष्णु वर्धन और साथ में है विघ्नेश, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशदेव, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू, हंसमुख लाल, बुलबुल शक्ति और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है कस्बा गुनूर यूपी से ही, फारूक अली खान, फेजी, फरहाज, फरहीन, फारिया और ताहिरा। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयक मुणत, चेतन नहटा। साथ ही फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, आप है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरी नौरी नासना और साथ में मोहम्मद कैफ अंसारी, गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरु मेजू गौरव, परवीन युगम और साथ में है मनराज, काटा रोड वाशिम से मिठल सुरोशी, सुषमा परिधि और साथ में मायरा सुरोशी। और इसी गीत को सुनना चाहा है, आप हैं श्रोता जिन्होंने हमें मैसेज लिख भेजा है बाला देहरादून से गणेश भारद्वाज, बिजलवान दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र मुंडी पी, कुलदीप रावत और साथ में लिया कतरजाई वाले। और ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आपने फरमाइश लिख भेजी है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत। साथ ही ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं धनोरी तेलेवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और साथ में आयन बाबू। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं कच्छ गुजरात से गंगा बनकर, गोविंद बनकर, प्रीति जूली, गीता महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश, महेश, जयंती और साथ में इनका पूरा बनकर परिवार। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, हेमलता और यशुदास की युगल स्वर, फिल्म का नाम चितचोर।

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Join 60,000 strong UPES community working with industry giants like Apple, Google, and Microsoft. Application close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
1: समय 11:30 और 24 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्स फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य लाडू कोयल मल्होत्रा, इनके पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गे भाविक सिक्का, और उसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं जिला बरेली गाँव करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन समा अंसारी, शमीम और माहिनू अंसारी। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, बसंतराव भोजनी, पी एस ए नवानकर और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता जिन्होंने मैसेज हमें लिख भेजा है। आप हैं शांति निवास लहेगा रेलवे जिला अमरावती से कुमारी कल्पना कुराड़ी, वंदना आशीष और दीपक कुराड़ी, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं। मुबारकपुर उचिता की आजमगढ़ से फातिमा सोगरा, वक्कार हैदर, कनिज सकीना हसीना और साथ में इनके परिवारजन। गांव ककराली पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य अंजलि नेहा और साथ में इनकी परिवारजन। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबीर और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। और ये गीत सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। रामगंज खंडवा से हैं विजय महोबिया, कविता सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आप हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बनी, आरुष शौर्य और साथ में दिनेश। और ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। शेरवानी स्कूल गंज डिडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना और साथ में आलिया अंसारी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध सलोनी, संजू लल्ला और साथ में इनके परिवारजन। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ें हैं सुरेश वाडकर और साथियों की फिल्म का नाम विधाता।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं मोटक का माफी जिला खंडवा से। किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी, किशन भावना मन मानस और साथ में कनिका पटेल। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमान सिंह डागला है, पीजीएस नायक शोभा और साथ में समस्त डागला परिवार। तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजय अभिनय और साथ में हैं साई किरण। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जी शानवार, सिमरान शेख और रेहान शेख। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और साथ में हैं शोएब खान। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है आकोट से हैं विनायक बिंडे, मंगला विजय, शुभम पवन जरिए के, संजीव डाबेराव। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, परवीन मुनीश और राहुल शर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं आप हैं संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फा डावर, अब्दुल हक जियालक, मोहम्मद उमर डावर और साथ में राजेंद्र कटारे। ये मैसेज हमें लिख भेजा है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडी, उषा बुरांडी अनुश्री और साथ में धनश्री बुरांडी। साथ ही ये मैसेज लिखते हैं आप हैं काठूगोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, सुनीता राज, भानु अमित खन्ना मी और साथ में हैं बल्लू। और ये मैसेज श्रोता लिखते हैं मैसेज हमें लिख भेजा है आपने रामपुर रोड हल्द्वानी से हैं गंगा सिंह रावत और इनके परिवारजन। साथ ही ये मैसेज श्रोता लिखते हैं नागपुर से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सुरैया और तलत महमूद की आवाज़ में फिल्म मिर्जा गालिब से ये रचना।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल ईशान छिपा और पूजा परिहार। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और साथ में ओम कुमार। साथ ही ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया और साथ में आयन बाबू, हैदराबाद कीसरा मंडल से सदानंद गौड और साथ में इनके परिवारजन, मॉडल टाउन करनाल से सुधी नूतन, संदीप गुगलानी, जगभवन प्रजापति और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं हैदराबाद बी एन रेड्डी नगर से मोनी कबालू और विनय कुमार। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं गांव पुटपुक्का तेलंगाना से भवानी वेंकट, मास्टर मिथुन और साथ में हैं महादेव। लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश शर्मा, मंजू, निशांत कौशिक की दीपाली और साथ में युवान और आर के राजा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर साथ में सीटी छाबड़ा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खरामपुर से भाई रफल साहिब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डेनी और मनीष पंवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल और खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। साथ ही ये मैसेज श्रोता लिखते हैं आप हैं करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनवीत, मनविंदर सिंह पांडा और साथ में हैं इनके जी एस रामगढ़िया। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं दहियापुर भाबले से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और अशोक येले, शेरी पडनेर अकोला से अरुणा दामोदर, आदित्य दामोदर। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है अपनापन।

आइए श्रोता, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के सकले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, साथ में करमजीत कौर। ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबियान, सूरीहान और इसी गीत को सुनना चाहा है। आपने मैसेज में लिखा है गांव उगाला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और साथ में इनके परिवारजन, फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु लाड़ी, शालिनी टिवांशी और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है। रघुवीर नगर से दिलावर खान, असीने बानो, एलिजना बुलड्डू, साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं गुन्नूर से हैं आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहे आप है परिमल कासगंसी, आबाद खान, नबील खान, आरफा इल्मा खान, एम असलम सेफी और साथ में हैं मीरा सराय बाद बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं अब्दुल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, साइना काजल और भाई शहजाद अली। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मिंदू, सौरभ और साथ में हैं साइना और निवान शर्मा। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है खुशबू।

कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप है तेली पारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक, विभियाष श्रीवास, साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश शर्मा और करुणा वर्मा ने। साथ ही फरमाइश लिखते हैं रेलवे रोड गंजी टिडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार, नजमा बेगम और साथ पिन की भाभी सरिता गौतम। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजानम और

0: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी। गांव कमवार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना सनकसना आफिया इब्राहिम सद्दाम और सातमी अदीब ने यह मैसेज श्रोता ने जिन्होंने हमें लिख भेजी थी। आप हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई मदीन भाई और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राम कारी मीना कारी पुंजराजी आरती आकर्षण और साथ में जय श्री। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद और शाहिद। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं दंतरंगी के हैं भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और साथ में रुद्र। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है आप हैं नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूक शबनम शहनाज और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है आप हैं पुनावली पुणे से अजय सुनवरे अविका विशाखा और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं आपने मैसेज के साथ ये फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांधी रोड गंजडी डुवारा से मोहम्मद यासिफ शेख मोहम्मद अजीम शेख मोहम्मद जावेद मरियम फातिमा और साथ में इनके परिवारजन। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्टो रोजी पर्ल और बिली से डिकेस्टो। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी डब्वाली हरियाणा से जे की बोकुल या सुनीता और इनके परिवारजन। श्रोताओं इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी देहरादून है। इस समय दोपहर के 12 बजने को है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम

0: डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से
2: राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है।
1: उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
4: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international

0: national partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online, and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds immense significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India, but to the entire global south. Notably, this marks India's 13th participation at the G7 summit and the Prime Minister's 7th consecutive participation. India's regular participation at the G7 summits reflects the increasing recognition of New Delhi's role and contribution in the addressing global challenges related to peace, security, development and environmental sustainability. Ankit Kumar, Akashwadi News, Evian, France.
1: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal. She said sufficient quantity of fertilizers is available for the Kharif crop season. Union Minister for the Ministry of Road Transport and Highways Nitin Gadkari will visit Shillong today to participate in key events focused on infrastructure development and connectivity in the Northeast region. The Union Minister will inaugurate the Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition 2026 today at the Lariti Performance Centre in Mokasiang, Shillong. The United States and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the forenoon session today following the announcement of a peace deal between the United States and Iran. The Sensex climbed 1,090 points to 76,618, while the Nifty advanced 336 points to 23,958 when reports last came in. In the FIFA World Cup, Ivory Coast defeated Ecuador by 1-0 in its first World Cup appearance in a dozen years at Group E match at Philadelphia Stadium today. In another encounter, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match at the Monterrey Stadium in Mexico. In today's fixture, Spain will play against Cabo Verde in their Group H match at the Atlanta Stadium in the United States. The game will start at 9:30 p.m. IST. And with that, we end this news bulletin.
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रागिनी बिंजोला से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। अधिमास की सोमावती अमावस्या पर हरिद्वार सहित प्रदेश के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्थाओं के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से राज्य के विकास के लिए सुझाव देने का आह्वान किया। नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीब करौरी महाराज के स्थापना दिवस पर आज मेले का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात सहित अन्य सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। पौड़ी जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी ने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध वर्ग से आह्वान किया कि वे अनुभव, ज्ञान और सुझावों से उत्तराखंड के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय 416 पदों की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निर्विवादित हुई। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने द्वितीय चीफ जस्टिस कप गोल्फ टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और महिला टी20

0: क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:12 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए अनिका शर्मा के गाए भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिका शर्मा की गाई भजन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी।

घर गृहस्थी सुनने वाली सभी बहनों को मीरा नेगी का नमस्कार। स्वागत है बहनों आप सभी का आज के कार्यक्रम में, और हमें उम्मीद है बहनों आप सभी स्वस्थ होंगी और साथ ही आप अपने परिवार का भी विशेष ध्यान रख रही होंगी। बहनों, गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, अधिक तापमान और थकान लेकर आता है। इस मौसम में अधिक पसीना आने के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और कई बार तो कमजोरी और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। ऐसे में योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। योग करने से बहनों शरीर मजबूत और लचीला बनता है, ऊर्जा बनी रहती है और थकान भी कम होती है। इससे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तनाव जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। बहनों, योग करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। योग केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मन के लिए भी बहुत लाभदायक है। बहनों, आज के समय में तनाव और चिंता आम समस्या बन गई है। योग और ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हमें तनाव और चिंता से भी मुक्ति मिल जाती है। बहनों, अब इस चर्चा के बाद समय है एक गीत का, तो सुनते हैं ये गीत।

0: 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: बहनों करे योग रहे निरोग विषय पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता जिसकी जानकारी दे रही है मेघा कोठियार. तो आइए सुनते हैं ये वार्ता.
4: नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल एक अभ्यास ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को बदल देने वाली एक महान भारतीय परंपरा है. आज का हमारा विषय है करें योग रहें निरोग. भारत को योग की जन्मभूमि कहा जाता है. हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग की शक्ति को पहचाना. उस समय ना तो आधुनिक अस्पताल थे और ना ही महंगी दवाइयाँ, फिर भी लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते थे. इसका सबसे बड़ा कारण था योग और प्राकृतिक जीवन शैली. महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है. महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है. हमारे वेदों उपनिषदों और भगवद गीता में भी योग का उल्लेख मिलता है. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का संदेश दिया था. इसका अर्थ है अपने मन और शरीर को नियंत्रित करके सही मार्ग पर चलना. इतिहास में भारतीय महिलाओं ने भी योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया. चाहे माता सीता का धैर्य हो, माता अहिल्याबाई की शक्ति हो या रानी लक्ष्मीबाई का साहस हो, इन सभी के जीवन में मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास था. यही योग का सबसे बड़ा प्रभाव है. आज की महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं. वह माँ भी है, बेटी भी, पत्नी भी और एक प्रोफेशनल भी. सुबह से रात तक वह लगातार काम करती रहती है. लेकिन इस भागदौड़ में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती है. आज महिलाओं में तनाव, थकान, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, पेट दर्द और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. कई महिलाएं अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं से भी गुजर रही हैं. ऐसे समय में योग एक सशक्त समाधान बनकर सामने आता है. योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन को भी शांत करता है. जब मन शांत होता है तब जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है. महिलाओं का शरीर कई बदलावों से गुजरता है. किशोरावस्था, विवाह, गर्भावस्था और बढ़ती उम्र, हर चरण में शरीर और मन को विशेष देखभाल की जरूरत होती है. योग इस देखभाल का सबसे प्राकृतिक तरीका है. निरंतर योग करने से लाभ देखने को मिलते हैं. योग शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है. नियमित योग करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. ध्यान और प्राणायाम तनाव को कम करते हैं. योग करने से मन सकारात्मक रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है. महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की समस्या आम होती है. योग शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. योग गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत लाभदायक

है। इससे शरीर मजबूत रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। योग शरीर को सक्रिय बनाए रखता है। आज पूरी दुनिया योग की ताकत को स्वीकार कर रही है। भारत के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। विदेशों में भी लोग योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बड़े-बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक मानते हैं कि योग कई बीमारियों को रोकने में मदद करता है। आज लोग दवाइयों से ज्यादा प्राकृतिक जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। योग का तात्पर्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन, शरीर का मन से समन्वय और जीवन का प्रकृति से संतुलन। योग केवल व्यायाम नहीं, यह जीवन जीने का एक संपूर्ण पद्धति है। योग हमें सिखाता है कि हम अपने मन पर नियंत्रण कैसे करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सम तत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में संतुलन बनाए रखना ही योग है। योग की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। हमारे ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं में बैठकर योग साधना करते थे। वे प्रकृति के निकट रहते थे और दीर्घायु होते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में योग के अनेक उल्लेख मिलते हैं। उपनिषदों में भी योग को आत्मज्ञान प्राप्ति का माध्यम बताया गया है। आज की जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी है। लोग घंटों मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। शारीरिक श्रम कम हो गया है। फास्ट फूड का सेवन बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। मानसिक तनाव भी आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तथा हर व्यक्ति तनावग्रस्त दिखाई देता है। ऐसे समय में योग एक संजीवनी की तरह कार्य करता है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पहले के समय की दादियां और नानियां बिना जिम और दवाइयों के भी मजबूत और सक्रिय रहती थी, क्योंकि उनकी दिनचर्या प्राकृतिक होती थी। वे सुबह जल्दी उठती थी, काम करती थी, पैदल चलती थी और मानसिक रूप से शांत रहती थी। आज आधुनिक जीवन ने सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन साथ में तनाव और बीमारियां भी बढ़ा दी हैं। अगर हम भविष्य की बात करें तो आने वाला समय और भी ज्यादा व्यस्त होने वाला है। मोबाइल, कंप्यूटर और मशीनों पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। बच्चे बाहर खेलने से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताएंगे। ऐसे समय में योग ही वह रास्ता है जो आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रख सकता है। अगर आज की महिलाएं योग अपनाएंगी तो वे अपने बच्चों को भी स्वस्थ जीवन की आदत सिखा पाएंगी, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ समाज की शुरुआत करती है। अनुलोम विलोम शरीर में ऊर्जा संतुलित करता है। कपाल भाती फेफड़ों को मजबूत करता है। भ्रामरी मानसिक तनाव कम करता है। उज्जायी मन को शांत करता है। आज का युवा देश का भविष्य है। यदि युवा स्वस्थ होंगे तो देश मजबूत होगा। योग युवाओं को नशे, तनाव और नकारात्मकता से दूर रखता है। हर युवा को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योग अवश्य करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्वच्छ वातावरण में योग करें, नियमितता बनाए रखें, संतुलित भोजन करें, सकारात्मक सोच रखें। आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। मासिक धर्म महिलाओं की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस दौरान कई महिलाओं को पेट दर्द, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान का अनुभव होता है। योग के माध्यम से इन समस्याओं में राहत मिल सकती है। बाल आसन, यह शरीर और मन को आराम प्रदान करता है। सवासन,
यह शरीर और मन को आराम प्रदान कर

0: करता है। मासिक धर्म की शुरुआती दिनों में कठिन योगासन करने से बचना चाहिए। गर्भावस्था में योग का महत्व। गर्भावस्था महिलाओं के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तितली आसन श्रोणी क्षेत्र को मजबूत बनाता है। वज्रासन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। प्राणायाम माँ और शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है। गर्भावस्था में योग विशेषज्ञ की देखभाल में ही करना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तनाव, इन समस्याओं का योग के द्वारा निवारण किया जा सकता है। योग हमें सिखाता है कि जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य शांति, संतुलन और आत्मिक सुख प्राप्त करना है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। योग हमें क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से दूर करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को पहचानता है। वह समझता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में होता है। आज स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न योग शिविरों का आयोजन किया जाता है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति योग को अपनाए तो देश स्वस्थ और खुशहाल बन सकता है। योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि व्यक्तित्व का विकास भी करता है। योग से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। भविष्य में योग का महत्व अधिक बढ़ने की संभावना है। आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में योग एक प्रभाव समाधान के रूप में उभर रहा है। महिलाएं योग शिक्षिका बनकर समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैला सकती हैं। महिलाएं योग और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में शोध कर सकती हैं, जिससे नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। ऑनलाइन योग प्रशिक्षण और वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से महिलाएं वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। भविष्य में योग चिकित्सा का उपयोग महिलाओं से संबंधित रोगों के उपचार में और अधिक बढ़ेगा। प्रिय श्रोताओं, जीवन में धन, पद और सफलता का महत्व तभी है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो सारी सुविधाएं व्यर्थ है। इसीलिए आज से ही संकल्प लें, हर दिन योग करेंगे, स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अपने परिवार, बच्चों और मित्रों को भी योग के लिए प्रेरित करें। अंत में यही कहा जा सकता है कि योग भारत की वह महान देन है जिसने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और शांति का मार्ग दिखाया। योग केवल बीमारी दूर करने का साधन नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को सुंदर बनाने की कला है। योग शरीर को शक्ति देता है, मन को शांति देता है और आत्मा को प्रकाश देता है। यह हमें अनुशासन, संयम और सकारात्मकता सिखाता है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता। विषय था योग करे योग रहे निरोग। वार्ताकार थी मेघा कोठियाल। उम्मीद है बहनों आपने वार्ता को ध्यान से सुना होगा और इसके लाभ जानकर आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएंगी। बहनों, हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक हमारे खान पान पर निर्भर करता है। जैसा भोजन हम खाते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है, और इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत आवश्यक है। इससे हमें काम करने की शक्ति मिलती है और हमारे शरीर का भी विकास होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सभी पोषक तत्व हमें भोजन से मिलते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहनों, हमें अपने भोजन में हरी सब्जियां, ताज़े फल, दालें, दूध, दही, अनाज और सूखे मेवे जरूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें जो

0: पोषण मिलता है, वह हमें कई बीमारियों से बचाता है। जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन आजकल हमारे युवा और बच्चे बहुत अधिक करने लग गए हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं ना हो, इसलिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। बहनों, हमें सर्दी हो चाहे गर्मी, पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए और साथ ही भोजन को हमेशा सही समय और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। हमें भोजन बनाते समय और खाते समय साफ सफाई का बराबर ध्यान रखना चाहिए। बहनों, अच्छा खान पान और अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है और हमें अपने भोजन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका ध्यान भी हमें ही रखना चाहिए। हमें ऐसी आदतें बनानी चाहिए और अपनानी चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए। इसलिए हमें संतुलित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बहनों, इस चर्चा के बाद कार्यक्रम में समय हो गया है मनोरंजन का, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
4: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.

बहनों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम घर गृहस्थी अनुभाग कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून 2480001। बहनों, आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकती हैं। और अब अपनी बहन मीरा नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम घर गृहस्थी। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब समाचार होंगे हमारी दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे

0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:05 हुए हैं। दीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित पूर्णागिरी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। पौड़ी जिले में 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी है। और सोमवती अमावस्या स्नान के पर्व के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित पूर्णागिरी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखंड के निर्माण के लिए सभी नागरिक अपने घर, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प ले तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जनभागीदारी से ही एक जन आंदोलन का रूप ले सकते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए देहरादून में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सहकारिता सचिव डॉ. इकबाल अहमद और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर शाश्वत विश्वास ने इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: 5 वर्षों की अवधि के लिए किए गए इस समझौते के तहत स्थापित होने वाली परियोजना प्रबंधन इकाई उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र

0: ये नवाचार, अनुसंधान, क्षमता विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण का प्रमुख केंद्र बनेगी। यह इकाई सहकारिता क्षेत्र में नई संभावनाओं की पहचान, वैज्ञानिक अध्ययन, नीति निर्माण में सहयोग और सहकारी संस्थाओं के आधुनिकरण के लिए कार्य करेगी। इसके माध्यम से प्रदेश की पैक्स, जिला सहकारी बैंक, बहुउद्देश्य सहकारी समितियां और अन्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण, क्षमता विकास, व्यावसायिक मॉडल निर्माण, विपणन सहायता, प्रबंधन सुधार और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों व चुनौतियों का व्यापक अध्ययन कर विकास की नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी। ये परियोजना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित होगी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ उत्तराखंड में सहकारिता के संसाधनों, संभावनाओं और चुनौतियों का गहन अध्ययन कर विकासोन्मुख कार्य योजनाएं तैयार करेंगे। इससे प्रदेश में सहकारिता आधारित रोजगार, स्वरोजगार, विपणन और आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह इकाई सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार, शोध और ज्ञान आधारित विकास का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी, जिससे सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
1: उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर श्री अंबानी ने धाम के विकास और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान स्वरूप प्रदान की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: पौड़ी जिले में 1962 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट सेवा पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी है। मौजूदा समय में जिले के द्वारीखाल, एकेश्वर, जहरीखाल, कलजीखाल, नैनीडांडा, पाबो, पौड़ी और थलीसैंड विकास खंडों में 8 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट संचालित की जा रही है। शेष विकास खंडों में भी इस सेवा के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन यूनिटों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को उनके घर द्वार पर ही निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक यूनिट में एक पशु चिकित्सक और एक पैरावेट कर्मचारी तैनात है। साथ ही वाहन आवश्यक दवाइयों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य पशुपालकों को त्वरित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
3: पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वेटनरी यूनिट इसको कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती है। पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल्स हमें प्राप्त हो चुकी है। ये कॉल्स जो प्राप्त होती है ये पशुपालन विभाग के 1962 टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती है, जो कि सीधे सीधे हमारे मोबाइल यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होता है। इसमें करीब 44,000 पशुओं को चिकित्सा सेवाएं हमारे 8 ब्लॉक के मोबाइल वेटनरी यूनिट द्वारा प्रदान की गई है।
1: सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर आज हरिद्वार में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। अधिमास में पड़ने वाली इस सोमवती पर बड़ी संख्या में लोग गंगा घाटों पर स्नान और कर्मकांड के लिए पहुंच रहे हैं। तड़के से ही हरिद्वार में गंगा घाटों पर देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं।
4: हमारी तीनों बहनों के साथ में और हमारे धर्मपत्नी को साथ में लेकर आए हैं स्नान करने के लिए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था के लिए कोई कमी नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है स्नान करने के लिए। यहाँ मतलब ये बहुत उत्सव है, हर आदमी के अंदर मतलब जज्बा है। सोमवती अमावस्या का भी हम नारे हैं और हर की पेड़ी का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए हमें यहाँ स्नान करने के लिए आए।
5: सोमावती अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ का जो नजारा है गंगा मैया का वो देखने और स्नान करके इतनी शांति मिल रही है, बहुत बढ़िया। सारे लोग आनंद से बड़े आराम से सारी जनता नहा रही है।
1: वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने बताया कि सोमवती स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
6: सोमवती अमावस्या सबसे बड़ा स्नान हरिद्वार का मंदिर है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। सिटी में सिक्योरिटी एस्पेक्ट में ATS BDS डॉग स्क्वाड और इसमें काफी संख्या में हमारे जो है APCP और ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हुए हैं। मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए 6 सुपर जोन है, 16 जोन है और 46 सेक्टर्स है। इसके अतिरिक्त SDRF NDRF की टीमें लगी है जो की कोई ढूंढने घटना अगर होती है उसको देखने के लिए।
1: पौड़ी जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी ने विद्यार्थियों के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के युवाओं को कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। संस्थान के निदेशक डॉ BK बंगा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग के साथ साथ कला वर्ग के विद्यार्थी भी इंटरमीडिएट पास करने के बाद प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि BCA पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को रोजगारपरक तकनीकी कौशल प्रदान करेगा और उच्च शिक्षा, उद्यमिता और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध कराएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित पूर्णागिरी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। पौड़ी जिले में 1-6-2 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी और सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

FM 100.5 पे का हर्ष पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये स्वर था यशुदास का, फिल्म का नाम था सावन कुआ दे दू। बोल थे पी पंकज की और संगीत राजकमल का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम अभिमान। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत एच डी बर्मन का है।

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था दूर रास्ते। गीत था आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
1: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी व बिमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक

0: हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओ, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर नौ दो ग्यारह हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर,
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
3: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरे लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
3: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे! ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
4: सात का पहला सुनो।
5: सात एकम सात,
6: सात एकम सात,
5: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है।

0: कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, चोर से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
2: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है?
1: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
2: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
2: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
2: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
1: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
2: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
1: वो कंचा।
2: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
2: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो।
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
2: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं,
5: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: श्याम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ, अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी।

0: उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो माँ?
2: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
2: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
2: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा।
1: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
2: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा।
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
3: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 2 बजे अब सुनिए समाचार।
4: And I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Evian this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. Prime Minister Narendra Modi is currently holding talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia. Both the leaders met at the Bratislava Castle for their bilateral engagement. Earlier, Prime Minister Modi was accorded a guard of honour in presence of his Slovak counterpart. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. Details from our correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi will attend a lunch hosted by Slovak Prime Minister Fico in a short while. Both Prime Ministers will lay a wreath at the tomb of the unknown soldier. Sri Narendra Modi will also attend an onboard cruise meeting with selected Slovak business leaders alongside the Slovak Prime Minister. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava.
4: This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit reaffirmed

0: farmers, it will have an impact because this year his income will be stressed out.
1: Union Ayush Minister Pratap Rao Jadhav today said the main national event of the International Day of Yoga IDY 2026 will be held in Kolkata on the 21st of June, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations. Addressing the curtain raiser press conference for the day in New Delhi, the minister noted that the theme for IDY 2026 is Yoga for Healthy Aging, which addresses one of the most significant challenges of the modern era. Mr. Jadhav added that yoga plays a vital role in helping people lead healthy, active, self-reliant and mentally resilient lives as they age.
2: Ministry of Culture Dwara.
3: This year, Ministry of Culture will organize special programs at 100 prestigious and iconic spots across the country to mark the International Day of Yoga IDY celebrations. This initiative will connect yoga with our culture and historic heritage to make yoga a national festival. The main event of IDY 2026 will be organized at the Red Road of West Bengal's historic capital city of Kolkata on 21st of June, where Prime Minister Narendra Modi will also lead the celebrations.
1: Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh today commenced commercial flight operations, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. Addressing the inaugural ceremony, Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu said the airport will have the capacity to handle 1.2 crore passengers annually in the first phase, and the capacity is expected to exceed 7 crore annually after its completion. He said the airport will serve as a hub for both domestic and international operations. A group of 170 farmers who gave their land for the airport, led by Jewar MLA Dhirendra Singh, along with others, boarded the first commercial flight from Noida International Airport, Jewar, to Lucknow. In a landmark move to protect children online, the UK government has banned teenager under 16s from accessing high-risk social media platforms. Prime Minister Keir Starmer described the move as a big moment that would bring real change for children and their future, saying the measures are aimed at giving young people their childhood back.
4: Today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. This is not something I do lightly, and I will not present it as cost-free, as if social media has brought no benefits to young people, because clearly that is wrong.
1: In the FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match at Monterrey Stadium in Mexico today. Sweden produced a dominant second-half performance to seal a convincing victory. The win gives Sweden a strong start to their World Cup campaign, while Tunisia suffered a heavy defeat despite reducing the deficit before halftime. In the other event for today, Spain will play against Cabo Verde in their Group H match at the Atlanta Stadium in the United States. The game will start at 9:30 p.m. IST. The 19th Mumbai International Film Festival will begin today. The formal opening ceremony will be held at Mumbai's Ravindranatya Mandir in the evening. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries. More from our correspondent.
5: MIFF, the much-awaited biennial film festival for non-feature films, will open with the animated work Good Luck to You All, directed by Caudal Barker, the short fiction Agapito, directed by Arvin Bellarmino and Kayla Daniel Romero, and the documentary Time and Water, directed by Sara Dosa. Master filmmaker David Attenborough will be honored with the screening of his two films under centenary tribute. The 19th MIFF will also feature 10 masterclasses and 5 open forum discussions. The festival will confer 18 awards across international and national competition categories. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal till tomorrow. The weather agency has issued an orange colour warning for thunder squall conditions over Rajasthan, East Uttar Pradesh, Odisha and West Madhya Pradesh today. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. India's Wholesale Price Index, WPI-based inflation, accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
6: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
6: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
8: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की अहम भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सातवीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
6: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
7: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
6: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
6: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
10: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
6: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
6: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
11: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, जब जब देश पर विपत्ति आती है, संकट आता है, ऐसे में हमारे सैनिक देश को मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे ही वीर सैनिक थे मेजर भूकांत मिश्रा, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बहादुरी से देश की रक्षा के लिए लगे रहे। मेजर भूकांत मिश्रा का जन्म आज ही के दिन 15 जून 1941 को आगरा जिले के नौबस्ता तालेपारा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था बीएल मिश्रा। बचपन से ही भूकांत मेहनती थे और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक थे, और यही कारण है कि देश की सेवा के लिए 4 अप्रैल 1970 को कुमाऊं रेजिमेंट की 15वीं बटालियन में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे कार्यक्रम में, पहले सुनवाते हैं ये गीत।

सैनिक साथियों, वर्ष 1984 में पंजाब में अमृतसर की स्वर्ण मंदिर पर आतंकवादियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। भारत सरकार द्वारा मंदिर को खाली कराने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया गया और उस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके लिए 6 जून 1984 को मेजर भूकांत की कंपनी को मंदिर परिसर खाली कराने का कार्य सौंपा गया। परिसर को छावनी बना दिया गया। इसके लिए सुबह 4:40 पर मेजर भूकांत मिश्रा के नेतृत्व में कंपनी बख्तरबंद वाहन के पीछे पीछे आगे बढ़ चली और जल्दी टैंक रोधी तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। इस गोलीबारी में

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, ऐसे में भूकांत मिश्रा ने चारों ओर हो रही गोलीबारी की परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़ चले और शीघ्र ही कंपनी पर कमान और नियंत्रण स्थापित किया। सैनिक साथियों, अगले ही फिर दिन सुबह 5:30 पर दो कंपनियों को भेजा गया। दोनों कंपनियां जैसे ही आगे बढ़ी उन पर गोलीबारी शुरू हो गई। मेजर भूकांत मिश्रा की कंपनियों को एक बार फिर से नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में मेजर भूकांत कंपनी के आगे खड़े हो गए और कंपनी को अपने पीछे आने का आदेश दिया और कॉम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया। ऐसे में मेजर भूकांत के इस साहसपूर्ण कार्य से कंपनी का मनोबल बढ़ा और एक मजबूत मोर्चा बना लिया गया।

सैनिक साथियों में चेरबुक कांत मिश्रा पर तो जैसे जुनून था दुश्मन को मार गिराना और मंजिल की ओर आगे बढ़ना। और ऐसी स्थिति में मिशन में बेस में एक गड्ढे से दागी जा रही मशीन गन भी अब आगे बढ़ने में बाधा डाल रही थी। मेजर ने अपनी जान की परवाह किए बिना बेस की ओर रेंगते हुए आगे बढ़ चले और गड्ढे से ग्रेनेड फेंक कर हल्की मशीन गन और उसके चालक दल को नष्ट किया। और इसके तुरंत बाद मेजर कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने वाली सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े उन पर गोलियों की बौछार हुई और वे शहीद हो गए।

0: सैनिक साथियों में चेरभूकांत मिश्रा की साहस, वीरता और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज उनकी जयंती पर हम सलाम करते हैं मेजर भूकांत मिश्रा को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बा

सैनिक साथियों, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे ही आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से समाचार सुर्खियां सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी गढ़वाल में आयोजित जय कंडोले महोत्सव में 110 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए और धाम के विकास तथा धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान की है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नगला तराई में खेत की जुताई कर जैविक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम में आज बाबा नीम करोली महाराज का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर कैंची धाम में बाबा के जयकार, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय के विशेष अभियान गंगोत्री से गंगा सागर के तहत ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया है। आप सुन रहे थे समाचार सुर्खियां।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:02 हुए, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

ये थे कुमार सानू और कविता कृष्णामूर्ति। फिल्म का नाम था 1942 लव स्टोरी। गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने और शब्द रचना थी जावेद अख्तर की। आइए अब आपको सुनवाते हैं नदीम शर्वन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की। फिल्म का नाम आदमी खिलौना है।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में समीर की शब्द रचना, आवासीय अलका याग्निक और उदित नारायण की फिल्म का नाम अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोताओं गाने नई तरह प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं सुखविंदर सिंह को, फिल्म का नाम है अस्तित्व।

गुरु रंधावा और साथियों की आवाज में गीत था, फिल्म का नाम था अर्जुन पटियाला। शब्द थे गुरु रंधावा का और संगीत सचिन जिकर का था। श्रोताओं 3:32 हुई हैं, आप सुन रहे हैं गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन को, फिल्म का नाम सत्यमेव जयते 2। ये संगीत है रोचक कोहली का, शब्द मनोज मुंतशिर के हैं।

आप सुन रही थी श्रेया घोषाल और साथियों को, फिल्म का नाम था बाजीराव मस्तानी। श्रोताओं, कहानी नई तरह ने प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

यह आवाजें थी सुखविंदर सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम था कुरुक्षेत्र। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत। नीति मोहन और साथियों की आवाज में फिल्म का नाम गदर 2।

0: आप सुन रही थी कहानी नई तरहने, इनका प्रसारण आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से किया गया। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजे ही लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिला मुख्यालय में आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण करने के साथ ही रामलीला मैदान में आयोजित कंडोले महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खडीमा स्थित अपने निजी आवास नगला तराई स्थित खेत में टेलर चलाकर खेत की जुताई की और खेत में गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक व पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में पत्रकार वार्ता की है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में लगातार 12 वर्ष मिले नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। नैनीताल में कैची धाम मेले को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष परिवहन व्यवस्था की है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने के निर्देशन में काठगोदाम और हल्द्वानी से कैची धाम और नैनीताल रूट पर शटल बसों का संचालन शुरू किया है। भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी रूटों पर विशेष निगरानी की जा रही है। पौड़ी जिले में 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी है। इसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को उनके घर पर ही निशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य और सफल आयोजन की तैयारियों के तहत पिथौरागढ़ में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन, कलेक्ट्रेट परिसर में रामलीला मैदान तक आयोजित इस जागरूकता रैली का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य, फिटनेस और भारत की प्राचीन योग परंपरा के प्रति जागरूक करना था। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों पर बारिश की संभावना जताई है। देहरादून में भी दोपहर तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए अशोक रॉय का सरोद वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं सरोद पर राग किरवानी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अशोक रॉय का सरोदवादन। FM 100.5 मेगाहर्ज पर हब आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार। श्रोतम कार्यक्रम में एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री सुरैया, जिन्हें मलिकाए हुस्न और मलिकाए अदाकारी के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म आज ही के दिन 15 जून 1929 को हुआ था। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे कार्यक्रम में। पहले सुनवाते हैं इनकी फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, सूर्या का जन्म लाहौर पंजाब में हुआ था। इनके बचपन का नाम था सूर्या जमाल शेख और इनके पिता का नाम था अजीज जमाल शेख और माता का नाम मुमताज शेख था। और जब ये एक साल की थी तो वे इस सूर्या को लेकर मुंबई चले आए और इन्होंने मुंबई के फोर्ट जिले में न्यू हाई स्कूल में, जिसे अब जेबी पेट्रिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और साथ ही इन्होंने घर पर रहकर अपनी दादी से फारसी में धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। इन्हें साहित्य का बहुत शौक था और उर्दू साहित्य को खूब पढ़ा करती थी। और श्रोताओं, समय समय पर ये बचपन में ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के कार्यक्रम में प्रस्तुति दिया करती थी।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक कलाकार, आज की कलाकार सुरैया। श्रोताओं, 1936 में इन्होंने जद्दन भाई की फिल्म मैडम फैशन में मिसेस सुरैया के रूप में बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। पर श्रोताओं, एक बार ये फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई, जिसका निर्देशन नानू भाई वकील कर रहे थे, और सुरैया के खूबसूरत आकर्षण मासूमियत को देखकर उन्होंने मुमताज महल की भूमिका निभाने के लिए इन्हें चुना। और ये फिल्म 1942 में रिलीज हुई थी, और श्रोताओं, यहीं से इनके अभिनय की शुरुआत मानी जाती है।

अभिनेत्री और गायिका सुरैया को बचपन से ही गाने का बेहद शौक था, पर 1942 में संगीत निर्देशक नौशाद अली ने सुरैया की आवाज़ सुनी और उन्होंने फिल्म शारदा के लिए गीत गाने का इन्हें अवसर दिया और इसकी सफलता के बाद इन्होंने बाल कलाकार के रूप में गायन भी शुरू किया। वो फिल्में रही थी उसने क्या सोचा, मदर इंडिया, तमन्ना और स्टेशन मास्टर आदि। शुद्ध 1943 में सुरैया ने 14 वर्ष की उम्र में जे के नंदा की फिल्म इशारा में पृथ्वीराज कपूर की नायिका के रूप में अभिनय किया था और 1943 में फिल्म हमारी बात में इन्हें इनकी भूमिका के लिए खूब सराहना मिली थी। साथ ही ये उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम ये कलाकार, आज की कलाकार सुरैया। श्रोताओं, 1945 में सुरैया के करियर का महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ जब इनकी एक साथ 5 फिल्में नजर आई, जिनमें ये अपनी एक अलग अनुभव में दर्शकों के सामने थी। फिल्में थीं यतीम, सम्राट चंद्रगुप्त, मैं क्या करूं आदि। श्रोता, इस प्रकार से 1946 में इन्होंने महबूब खान की फिल्म अनमोल घड़ी में सेकेंड लीड के रूप में अभिनय किया, जिसमें इन्होंने एक जिद्दी गांव की लड़की बसंती की भूमिका निभाई थी और इनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई थी। और श्रोता, 1947 में जब देश आज़ाद हो चुका था, ऐसे में इनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें परवाना, डाक बंगला, दो दिल और दो नैना जैसी फिल्में मुख्य रहीं। और इसके साथ इन्होंने अभिनेता रहमान और देवानंद के साथ भी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। आइए आपको सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्वेता इस प्रकार से धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। लेकिन फिल्मों में एक बार फिर से इनके लिए खुशी तब आई जब फिल्म बड़ी बहन रिलीज हुई और ये फिल्म बहुत ही लोकप्रिय हुई। और इस प्रकार से श्वेता 1945 से 1954 तक इन्होंने 12 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया और 1951 से 1953 के बीच इन्होंने अपने करियर में कई व्यावसायिक असफलताओं के साथ उतार चढ़ाव भी रहा। तो वहीं फिल्म अनमोल घड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई तो 1954 की फिल्म मिर्जा गालिब इनके लिए उल्लेखनीय रही। और श्रोताओं, इस फिल्म में इन्होंने अभिनेत्री और गायिका दोनों की शानदार भूमिका में नाम कमाया और इसके लिए इन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किए। और 1963 में श्रोताओं फिल्म रुस्तम सोहराब जी की ये अंतिम फिल्म थी और उसके बाद श्रोताओं इन्होंने फिल्मों से अपने करियर से संन्यास ले लिया। सुरैया को भारतीय सिनेमा की सबसे महान और सबसे कुशल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। तो सरल भूमिकाएं, मधुर आवाज और सुंदरता के लिए ये जानी जाती हैं। सुनते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में एक लगी।

श्रोताओं, इस प्रकार से सुरैया ने सन 1936 से लेकर 1964 तक के अपने करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 338 से अधिक गाने गाए हैं और ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक रही हैं जो ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए इन्होंने बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, साथ ही इन्होंने स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट और पुरस्कार भी प्राप्त किया है। पुरुषोत्तम 31 जनवरी 2004 को इन्होंने लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनके अभिनय और इनके गायन को आज भी याद किया जाता है। सुनते हैं इनकी आवाज़ में कार्यक्रम में ये अंतिम गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार संपन्न होता है। हमारी आज की कलाकार थी अभिनेत्री सुरैया। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में

रात्रि 9:15 पर सुनिएगा स्पॉटलाइट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब से थोड़ी ही देर यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पर्यटन और स्वरोजगार विषय पर श्री योगेंद्र सिंह रावत से विनय ध्यानी की बातचीत। किसान साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7:00, जिसके अंतर्गत सुनिएगा मक्के की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार से बातचीत। आरएनए देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण का समय रहेगा शाम 7:50 पर।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा श्री ब्रजेश यादव से हिंदी वार्ता। विषय रहेगा विष्णु प्रभाकर के साहित्य में राष्ट्र प्रेम और मानवीयता। आप सुनेंगे कार्यक्रम सरकार के 12 साल रात्रि 8:10 पर। फिल्मी गीतों के सफर फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 पर, रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत रात्रि 10 बजे।

कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कल रात्रि 10 बजे सुनिएगा खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगा। कल प्रातः 7:30 पर शहर संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे शांति बिंजोला की आवाज में गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर। आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे कल प्रातः 9 बजे। सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत कल प्रातः 9:05 पर। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा कल प्रातः 11 बजे।

महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम महिला जगत कल दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे बच्चेदानी में रसौली कारण लक्षण और इलाज विषय पर डॉक्टर चंद्रा पंत से गीता राणा की बातचीत। कल दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अता हुसैन का एकल तबला वादन, ताल होगा झप ताल और तीन ताल। फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार का समय रहेगा कल दोपहर 4:30 पर, जिसमें हमारे कल के कलाकार होंगे अभिनेता और निर्माता मिथुन चक्रवर्ती। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 होने को है और अब प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त, मैं सोनाली कठेत
1: और मैं दिव्यज बहुगुणा। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी शाम अच्छे से बीत रही होगी। दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने अतीत की उन जड़ों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। और उन जड़ों का सबसे खूबसूरत रूप है हमारे बुजुर्ग।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हर साल आज यानी 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। आज हम केवल किसी समस्या की बात नहीं करते, बल्कि उस सम्मान, अपनापन और साथ की बात करते हैं जिसकी बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
1: सोनाली, आज की पीढ़ी के पास जानकारी की कमी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ भी जानना हो तो मोबाइल उठाइए और जवाब सामने। लेकिन जीवन को समझना हो, मुश्किल परिस्थितियों से निकलना हो, रिश्तों को निभाना हो, तो उसके लिए आज भी अनुभव की जरूरत पड़ती है। और अनुभव का सबसे बड़ा खजाना हमारे बुजुर्गों के पास होता है दोस्तों।
0: हाँ दिव्यज, और जब हम उनके साथ बैठते हैं, वक्त बिताते हैं, तो पता लगता है कि उनके जीवन की किस्से कहानियाँ भी किसी वेब सीरीज से कम इंटरेस्टिंग नहीं है। पर आजकल हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि उनके साथ बैठ ही नहीं पाते। पर दोस्तों, पता है, हमारे घर के बुजुर्गों को किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस हमारा थोड़ा सा वक्त ही उनके लिए काफ़ी होता है।
1: दोस्तों, दिन में कुछ मिनट की बातचीत, साथ बैठकर चाय पीना या उनकी कोई पुरानी बात सुन लेना भी उनके लिए बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल,
1: और यकीन मानिए दोस्तों, इससे फायदा सिर्फ उन्हें नहीं होता, हमें भी मिलता है, क्योंकि उनके अनुभव हमें बेहतर फैसले लेने, धैर्य रखने और जीवन को एक अलग नजरिए से देखने की सीख देते हैं।
0: सही कहा दिव्यज, और यही लाइफ स्किल तो हम युवाओं के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और वो कहते हैं ना कि उम्र के साथ सिर्फ साल नहीं बल्कि अनुभव भी बढ़ता है।
1: और दोस्तों, अनुभव वो पूंजी है जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन करती है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे जुड़ें और उनके अनुभवों को अपनी ताकत बनाएं। चलिए दोस्तों, आप पेश करते हैं आपके लिए कार्यक्रम का पहला गीत, जो कि लिया गया है फिल्म मलंग से और जिसे आवाज दी है सचित टंडन ने।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
4: दोस्तों, आज है सोमवार, यानी कि वो दिन जब हम कविता पाठ का खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये कविता पाठ प्रतिभा उनियाल द्वारा।
5: नज़मे, मैं पढ़ती हूँ नज़मे तुम्हारी, नज़मों के जरिए मैं पढ़ती हूँ नज़मे तुम्हारी, मैं पढ़ती हूँ नज़मे तुम्हारी और खुद को ढूंढती हूँ उनमें। शब्दों में तो नहीं उलझती हूँ इतना, मगर शब्दों के बीच वाली जो जगह है ना, मैं घूमती हूँ उनमें। मैं दर्पण में देखती हूँ खुद को और फिर तुम्हारे शब्दों को, मैं दर्पण में देखती हूँ खुद को और फिर तुम्हारे शब्दों को, खूबसूरती की उस व्याख्या में जो तुमने करी है मैं ढूंढती हूँ खुद को। शुरुआत में, अंत में और अंतरे में भी, शुरुआत में, अंत में और अंतरे में भी, तुम्हारी गज़लों में भी मैं खुद की ही झलक ढूंढती हूँ। एक दरिया सा रख देते हो तुम शब्दों का मेरे आगे और मैं उसकी गहराइयों में डूबती हूँ। शायद मैं तुम्हारे जीवन में अपना अस्तित्व ढूंढ रही हूँ इन नज़मों के ज़रिए। शायद जो तुम कहते नहीं ना मुझसे, मैं वो ढूंढ रही हूँ इन नज़मों के ज़रिए, इन नज़मों के ज़रिए। दूसरी कविता है, मैं लिखना चाहती हूँ। कभी कभी लगता है कि सब लिख दूँ, कभी कभी लगता है कि सब लिख दूँ, ये आसमां, ये पंछी, ये तारे, ये आसमां, ये पंछी, ये तारे, ये नदी के किनारे, ये मेज़, ये कुर्सी, ये किताब, हार जीत और खिताब, बच्चे की किलकारी, बुजुर्ग की लाचारी, बच्चे की किलकारी, बुजुर्ग की लाचारी, शबाब और उस पर लगा हुआ नकाब, ये पत्ते, ये फूल, पुराने खत और उन पर लगी हुई धूल। मैं लिखना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ वो लहरें भी जो खिंची चली जाती हैं चांद की तरफ, और वो सूरजमुखी भी जो मुड़ता है

0: सिर्फ सूरज की तरफ। मैं लिखना चाहती हूँ वो सब कुछ जो आत्मसात करती हूँ मैं हर रोज़ हर पल। मैं लिखना चाहती हूँ हर सुबह हर शाम हर दिन हर कल। अगली कविता है तुम भी। तुम भी टूटकर बिखरते हो क्या, तुम भी टूटकर बिखरते हो क्या, अगर हाँ तो फिर खुद ही उठते हो, खुद ही संवरते हो क्या, खुद ही खुद में उलझते हो क्या, फिर खुद ही सुलझते हो क्या। ये खुद से जंग तुम भी लड़ते हो, ये खुद से जंग तुम भी लड़ते हो, भीतर ही भीतर तुम भी मरते हो। इतने सवालों से घिर जाते हो तुम भी, इतने सवालों से घिर जाते हो तुम भी, जवाबों की तलाश में खुद से मिल जाते हो तुम भी। बातें बातें खुद तक रख पाते हो क्या, अकेले में बड़बड़ाते हो क्या। तुम भी मेरे जैसे हो क्या, या मैं अकेली हूँ इस मझधार में। क्या हम दोनों खड़े हैं साहिल पर एक ही तरफ, या हो तुम उस पार और इस पार में। अगली कविता का शीर्षक है एक दाव। कुछ नज़में पढ़नी है एक मंच ढूंढ रही हूँ, कुछ नज़में पढ़नी है एक मंच ढूंढ रही हूँ, किसी बात पर मायूस हूँ वो रंज ढूंढ रही हूँ। तुम बेरंग से दिख रहे हो, तुम बेरंग से दिख रहे हो, रुको मैं रंग ढूंढ रही हूँ। वो खो गया था जो एक, मैं वो छंद ढूंढ रही हूँ। मसरूफियत बड़ी है आजकल, मसरूफियत बड़ी है आजकल, अलग अलग किस्म के कई काम है करने को। मसरूफियत बड़ी है आजकल, अलग अलग किस्म के कई काम है करने को, उनमें से किसी एक में शगफ ढूंढ रही हूँ। मैं बंजर जमी के ऊपर फलक ढूंढ रही हूँ, जो मिल जाए साहिल पर कहीं सितारों की वो छाँव ढूंढ रही हूँ, जो मिल जाए साहिल पर कहीं सितारों की वो छाँव ढूंढ रही हूँ, जिसे खेल कर हासिल कर पाऊँ कुछ, मैं ऐसा दाव ढूंढ रही हूँ, मैं ऐसा दाव ढूंढ रही हूँ। अंतिम कविता का शीर्षक है नया सवेरा। शोर से भरा सन्नाटा क्यों है, शोर से भरा सन्नाटा क्यों है, इतनी गमगीन सी ये मुस्कुराहट क्यों है। शोर से भरा सन्नाटा क्यों है, इतनी गमगीन सी ये मुस्कुराहट क्यों है। कुछ छुपा रहे हो कुछ दिखा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो कुछ दिखा रहे हो, गाल पर आंसू और ये खिलखिलाहट क्यों है। क्यों है नाराज़गी बंदिशे क्यों लग रही हैं, क्यों है नाराज़गी बंदिशे क्यों लग रही हैं। अंदाज बेशक गलत है मगर उनकी बातें सही लग रही हैं। भटका है ध्यान क्यों, भटका है ध्यान क्यों, ऐसे सवाल उठने ही क्यों दे रहे हो। जिंदगी बहुत टेढ़ी चीज़ है, मजाक में क्यों ले रहे हो। चलो चलो सवेरा हुआ है नया, सूरज भी चमकता है आसमां भी साफ है, नई शुरुआत करो पुरानी गलतियां सब माफ हैं। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है क्या तुम मेरे वक्ता बनोगे, क्या तुम मेरे वक्ता बनोगे। मैं लिखना चाहती हूँ तुम पढ़ लेना, मैं लिखना चाहती हूँ तुम पढ़ लेना, मैं कागज को शब्द दूंगी तुम उसे आवाज़ देना। वो क्या है ना मैं बोलते बोलते लड़खड़ा जाती हूँ, वो क्या है ना मैं बोलते बोलते लड़खड़ा जाती हूँ, पढ़ते पढ़ते डगमगा जाती हूँ। मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाती हूँ, मैं बस शब्दों के बीच उलझी हुई रह जाती हूँ। क्या तुम मेरे वक्ता बनोगे, मैं लिख लेती हूँ तुम पढ़ लेना, मैं कागज़ को शब्द दूंगी तुम उसे आवाज़ देना। धन्यवाद।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ का हमारा खास सेगमेंट। चलिए अब सुनते हैं ये गीत फिल्म गुंडे से जावेद अली की आवाज़ में।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: दोस्तों, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, नदियों और सांस्कृतिक विरासत के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। सोनाली, ये तो सब हम जानते ही हैं कि हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, अब उत्तराखंड सरकार पर्यटन को सिर्फ बड़े होटलों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि वो चाहती है कि इसका सीधा लाभ गाँव और स्थानीय लोगों तक पहुँचे।
2: बिल्कुल दिव्य, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड होम स्टे योजना राज्य सरकार द्वारा लाई गई है। और पता है, अब तो पहली बार कम्युनिटी टूरिज्म यानी कि सामुदायिक पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि टूरिस्ट सिर्फ किसी जगह को देखेंगे नहीं, बल्कि वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोगों की जीवन शैली, संस्कृति, खान पान और परम्पराओं को भी करीब से जान पाएंगे।
1: और दोस्तों, इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी मदद से स्थानीय लोगों को भी रोजगार और अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना। ये योजना उत्तराखंड के लोगों को अपने घरों को होमस्टे के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।
2: जी हाँ, और अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका लाभ किसे मिल सकता है। सबसे पहले तो इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना जरूरी है। आपको बता दें कि ये योजना नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में लागू होती है।
1: और

0: तो इस योजना के अंतर्गत भवन स्वामी जो अपने परिवार के साथ उसी भवन में निवास करते हों, न्यूनतम एक और अधिकतम 6 गेस्ट रूम का निर्माण कर सकते हैं। फिर अगर आप नए होमस्टे के निर्माण या फिर किसी मौजूदा भवन को होमस्टे के रूप में रेनोवेट करते हैं तो उसका पंजीकरण उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में कराना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल, और पता है दोस्तों, इस स्कीम में पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला यानी कि ट्रेडिशनल हिल स्टाइल आर्किटेक्चर में निर्मित या विकसित भवनों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
0: अब दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति होमस्टे निर्माण या विकास के लिए बैंक से ऋण लेता है तो सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक की दी जाती है।
1: और खास बात यह है कि इसमें पूरे पुराने भवनों को रिपेयर करने और उसके रेनोवेशन के लिए भी सब्सिडी मिलती है। अप्लाई करने के लिए आपको बस msy.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत रजिस्टर करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने आधार और उससे लिंक्ड नंबर की जरूरत पड़ेगी।
0: बिल्कुल सुनाली, अब दोस्तों जानते हैं कि आवेदन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो इसमें आता है आधार कार्ड, फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि या भवन से संबंधित दस्तावेज, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, भवन का नक्शा या फिर लेआउट, या फिर अन्य संबंधित प्रमाण पत्र जिसकी डिटेल्स आप myscheme.gov.in से ले सकते हैं। फिर दोस्तों, जब आवेदन जमा हो जाता है तो उसकी जाँच जिला पर्यटन विकास अधिकारी और संबंधित समिति द्वारा की जाती है और प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उसे लोन प्रोसेसिंग के लिए बैंक को भेज दिया जाता है।
1: और फिर जब होमस्टे का काम पूरा हो जाता है तो पर्यटन विभाग और बैंक द्वारा निरीक्षण किया जाता है, और अगर सभी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो सब्सिडी भी दे दी जाती है। दोस्तों, सच कहूं तो हम युवाओं के लिए ये होमस्टे योजना केवल बिजनेस नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया बन सकता है जिससे हम अपनी संस्कृति को लंबे समय के लिए जीवित रख सकते हैं।
0: हाँ, और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें अपने घर और अपने गांव को छोड़कर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी नए अवसरों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, और ये गीत है फिल्म मिक्की वायरस से, और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: तो दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत है। सोनाली, आपको पता है 21 जून आने वाला है और 21 जून का दिन पूरी दुनिया में योग के नाम होता है।
2: बिल्कुल।
1: क्योंकि दोस्तों, हर साल करोड़ों लोग इस दिन योग करके स्वस्थ जीवन का संदेश देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बार का योग दिवस कुछ और ही खास होने वाला है?
2: और वो इसलिए क्योंकि इस साल 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसका लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ना और जन भागीदारी का नया रिकॉर्ड बनाना।
1: और दोस्तों, इस अभियान में हर कोई हिस्सा ले सकता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने योग संगम पोर्टल शुरू किया है और इस पोर्टल पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सरकारी और निजी संस्थान, सामाजिक संगठन और योग समूह अपने कार्यक्रम का पंजीकरण कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, जिसके लिए आप yoga.ayush.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां आपको रजिस्टर एज ऑर्गेनाइजर का ऑप्शन चूज करना है और कुछ डिटेल्स एवं सवालों के जवाब देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, सभी ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा फिर 21 जून को कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों की संख्या और तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करनी होती है और सत्यापन के बाद ऑर्गेनाइजर्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। बस इन्हीं कुछ प्रोसेसेस को करके आप भी इस वैश्विक योग उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों,
2: बिल्कुल, पता है दिव्य, योगा की तो ना खास बात यही होती है कि इसे करने के लिए किसी महंगी मशीन या बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। बस वक्त निकालना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों ही मजबूत बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सुनाली। और दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां पढ़ाई, करियर और सोशल मीडिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वहां योग हमें संतुलन बनाए रखना सिखाता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
2: सही कहा। और इस बार तो हमारे देश में कई योग सत्र आयोजित किए जाएंगे, तो हम आशा करते हैं कि इसमें हमारे युवा साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
1: तो दोस्तों, इसी कड़ी में सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो कि लिया गया है फिल्म सैयारा से और जिसे आवाज दी है विशाल मिश्रा ने।

0: दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें खत द्वारा बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड निकट रस्पना पुल और हमारा पिन कोड है 248001।
1: दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है youth@gmail.com और आप अपने विचार हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, आज के लिए हमें यानी सोनाली और दिविश को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 5:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनन वाल सब है श्रोताओं को गीता भंडारी की तरफ बटी नमस्कार प्रणाम पैलाग और राम राम स्वागत आपक अपूर्ण बोली भाषा कार्यक्रम ग्राम जगत मां श्रोताओं के हरिन झर पर राज खुश तो होले भाई किले की आजकल मौसम तो खूब भल है रहे उसी ले आज गंगा स्नानों का पर्व छू और आपको पता छू कि आज छू सोमवती अमूस सोमवती अमूस को हमार धर्म मां बहुत ज़्यादा महत्व छु यह दिन विवाही सैणिया अपन दुल्हक लीजी लंबी उम्र और सुखी जीवनक वास्ता यह व्रत को धरनी और गंगा का स्नान करनी दगड़ ही यह दिन पितरों के तर्पण और गंगा नयोणक लीजी ले शुभ हूँ। तो इन बातों को हम तो कार्यक्रम में अखिल ले करे दिल लेकिन श्रोताओं आपको बता दिनों कि आज ग्राम जगत माँ केछु आपक लीजी खास श्रोताओं हर रोजे की चारू आज हमारे कार्यक्रम में लोकगीत छिन जयमा गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीत होनी और दगड़ ही छिन खूब सार रैबार किले की रैबारों बिन जीवन ले अधूर सा लागू न और दगड़ी छू एक गढ़वाली भेंटवार्ता पर्यटन और स्वरोजगार यह विषय पर श्री योगेंद्र सिंह रावतक दगड़ बातचीत करला हमार सहयोगी विनय ध्यानी। लेकिन श्रोताओं हम यह वार्ता को ले आपको थोड़ी देर में सुनूल और हम छी बात ले आपक दगड़ थोड़ी देर में आज ही लगूल जन विषय पर हम बातचीत करना छी। लेकिन पहली हमार कार्यक्रम की जो एक परंपरा छू जो कुनी ना एक रिवाज हूँ हर चीज़ तो उसी हमार कार्यक्रम के लिए एक रिवाज छू और हम कार्यक्रम की शुरुआत में अपन श्रोताओं को सुनूनी कैले भाषा को चाहे गढ़वाली हो कुमाऊनी हो या जौनसारी एक गीत तो यही क्रम में मैं आपको सुनूँ आज गोकुल सिंह बिष्ट और उनर दगड़ियों का गाई या कुमाऊनी गंगा गीत

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
4: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
6: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
5: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
6: बल्ब, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
5: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
6: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
5: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
7: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: गीत और रविवारों का बाद एक बारी फिर से स्वागत है आपका 100.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी देहरादून केंद्र वटी। श्रोताओं, कार्यक्रम चलण ग्राम जगत और उम्मीद छू कि आप सब लोग यह कार्यक्रम को सुनना हुनल। और अगर आप सुनना चाहन, अगर कोई नई श्रोता चिन ऊँ ये कार्यक्रम में शामिल होना चाहनी तो उन्हर लीजिए भाई पत बतौन हमार फर्ज छू। चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com या छू हमार ननू नन चिट्ठीक पत जो कि झट झटाक वाली चिट्ठीक छू, तो आप ये माँ अपन विचार लिख सकता छा और ये ग्राम जगत परिवारक दगड़ जुड़ सक सा। छोतो आप सुन गंगा गीत और जमा स्वर ची गोकुल सिंह बिस्ट और हुनर दगड़िया के। उम्मीद छू कि आपको गीत जरूर भल लगा हुनल, किले कि भाई आज उसी ले गंगा स्नानक पर्व छू और गंगा जो छू ना हमारी हमको नहीं ना गंगा हमारी इज छू, पाप नाशनी छू, हमको मोक्ष देण वाल छू और गंगा जो छू हमारी एक पछाण छू, हमार देशक पछाण छू। यो केवल एक नदी ही ना बल्कि हमको कोनो की यो देव नदी छू। तो ये गंगा के प्रति हमारे लिए कुछ फर्ज छिन। हमको अपुन जो गंगा छू या जो और भी अन्य गाढ़ गदर नदी छिन उनको साफ रखण चे और ये नहीं सोचण चे कि भाई हम उल के खेड़ो या गंगा में हम कहाँ कूड़ कर कर डालनी। हम एक दूसर को अंगुल दिखोण से भल छू कि हम अपू को ही कुनी ना के शुरुआत करूँ वैसे ही। गंगा जदू साफ रहल, जदू स्वच्छ रहल, निर्मल रहल, तसे कुनी ना कि हमको ले भल लागल और जो हमारे देश में जो बिहार बटी आल लोग तो उले कॉल के हो कोई नदी छू तो गंगा जस हो तो यस होन चाहें और हमको कभी भी साफ सफाई से पिछिन्नी हटन चाहें। यो मतलब हमार विचार यस होन चाहनी मैं यस कौन चाहूँ। तो आज ले बहुत सारा लोग गंगा स्नानक वास्ता जा रहे होनल, कोई नैणा होनल, कोई अपन पितरों को तर्पण देना होनल, कोई और भी काम से जा रहे होनल। तो भाई की गंगा माँ जो घाट छिन वो माँ गंदगी नहीं करण चाहें और गंगा घाट पर जो भी नियम बढ़ाए रखें और तो वे पालन हमको जरूर करण चाहें। तब हम कुल की हवे हम छिन भारत देशक वासी, हम छिन गंगा नगरी रोण वाली। तो श्रोताओं, अब बातचीत को इतनी विराम दिनूँ और आपको सुनूँ आज खास जो छो आज की भेंट वार्ता पर्यटन और स्वरोजगार विषय पर ये भेंट वार्ता का विषय छू और ये मैं बातचीत करणीन श्री योगेंद्र सिंह रावतक दगड़ हमार सहयोगी विनय ध्यानी।
9: नमस्कार, मैं छू विनय ध्यानी और आज मेरे दगड़ जो मेहमान छिन उनको परिचय में आपसे कराना छो। आप छिन श्री योगेंद्र सिंह जो कि पहाड़ में पर्यटन से, रोजगार से और मीडिया जगत से जुड़िया छिन और कुल मिला के पहाड़, पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण यूं सभी विषयों पर वो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
10: बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी, आप अल मिथे कार्यक्रम में बुले।
9: अब सवाल पहले यौन हो कि हम पहाड़ था कन के बिंगा कम के समझा जबकि हम पर्यटन की बात करना चाहूँ, तो पर्यटन का हिसाब से पहाड़ को परिचय छ क्या?
10: देखिये ध्यानी जी, पर्यटन है तमाम संभावनाएं उत्तराखंड में छन, परंतु क्या ची हमुत है समझौन पुड़लो की वामा हमुल कन क्या ची मतलब क्या हिसाब से हमुल पर्यटक इकलौन और वामा की हमुल फैसिलिटी देन और हमुत है भी वामा काम कन पुड़लो कले की संभावनाएं तमाम छन पर हमुत है भी वामा काम करने आवश्यकता छाए जवाब
9: पहाड़ का पर्यटन का तौर पर अगर हम देखा तो सीधा सीधा लोगों की एक धारणा छे कि पहाड़ में पर्यटन का नौ पर सिर्फ और सिर्फ तीर्थाटन जो छे वो पहाड़ की पर्यटन आर्थिकी की रीढ़ छे सच में
10: वो तो छह जी पर वहाँ का अलावा भी जन हम सस्टेनेबल टूरिज्म में बात करना चाह तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जान वहाँ माँ कले की जो भी हमारे भौगोलिक स्थिति छन वो थोड़ा अलग छन और प्रदेशों मुकाबला एक आपदा भी आंदी और तमाम चीज छन तो हम तक ही कन पड़ लो कि सस्टेनेबल टूरिज्म पर ध्यान देन पड़ लो और जो ऑफ बीट लोकेशन छन मतलब जो अनटच लोकेशन छन उमा हम जो पर्यटक छन उतर डाइवर्ट कर पड़ लो कहले कि अब हम सिर्फ मसूरी या नैनीताल तक सीमित छा अभी तो जो ऑफ बीट लोकेशन थे वो भेजन पड़ लो जो हमारा गांव छन और जो भी हमारा कल्चर ची जो संस्कृति ची तो वहां से रूबरू करौन पड़ लो हम उतर पर्यटक
9: जन के हमारा देश का प्रधानमंत्री बोना छन के पहाड़ मा बारह मासा पर्यटन और जो सीमांत क्षेत्र छन वाइब्रेंट ब्ले वक कुछ नई पर्यटन की रूपरेखा तैयार करे जा ये तय आपके रूप में देखना चाहिए
10: हाँ बिल्कुल सही बात छियो और वे भी सकित कहे कि यहाँ क्या चाहिए कि हमारा कल्चर बिल्कुल अलग छो और जब पर्यटक आंदन भैरवटी तो वो मतलब कल्चर थे हमारे बहुत पसंद करते हैं और वहाँ से एक फायदा ये होल कि जो हमारी संस्कृति जो भैर जो अन्य प्रदेश छन या विदेश में भी रूबरू होली और वहां से इन होल की भाई पर्यटन भी जो समझ ला कि हाँ मतलब जो हमारे खान पीन और जो भी हमारे छो तो कैसा
9: बात ठीक बना छे आप और खास बात यह कि सिर्फ छह महीने की धकाधूम नहीं हुए बल्कि बारह महीनों की एक शांत और मर्यादित पर्यटन तो बढ़ावा दिए जा सके कि ये माँ भी बहुत कुछ भली बात हो सकत के लिए कि अगर हमारे जो शीतकाल का प्रवास छन उख माँ भी लगातार यात्रियों की संख्या आनी रहे तो वैसे भी कुछ ना कुछ धानी धंधा तो चल चला धानी धंधा की बात का लाभ किला की पर्यटन च तो स्वरोजगार छ रोजगार छ और आप ये दिशा में बहुत सुंदर प्रयास भी करना छिन ग्रामीण पर्यटन ते बढ़ावा देना छिन पारिस्थितिकीय पर्यटन ते बढ़ावा देना छिन जैसे हम इको टूरिज्म बना छु तो आप अपना अनुभव का आधार पर क्या बतेला कि पर्यटन से रोजगार की कितना संभावना है
10: संभावना है तो देखा ध्यानी जी बिजाम छन कहले की अब जो होम स्टे जब मतलब सरकार एक पहल करी की होम स्टे लोग काम करा तो होम स्टे एक स्वरोजगारों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम मतलब जो भी काम करता है तो वे इकोनॉमिकल मॉडल डेवलप हो तो इकोनॉमिकल मॉडल यहाँ से बहुत तुरंत हो डेवलप और दूसरी क्या चीज कि यहाँ मा अन्य चीज भी छन जन साहसिक पर्यटन वेगे और गाइड वेगे नहीं तो ये भी क्षेत्र खुल सकता नहीं कल हमूम भी जाम ट्रैक छन अभी भी ट्रैक इधर छन की जो एक्सप्लोर ही नहीं ट्रैक अभी वे क्षेत्र में वे सक दो जब बर्ड वॉचिंग और संभावना छन और भी तमाम तरीके के जो पर्यटन छन वो आराम से वे सक दो और होम स्टे तो बहुत ही शानदार पहल छी
9: होम स्टे तो लेके एक बात और भी समझ मानी छे की कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ो हो जानो छे की साहब होम स्टे माँ हम ते बिल्कुल होटल जानी सुविधा मिलना छे या कखी कखी ये बात भी आनी चाहिए कि ना वे ढंग से निचलना चाहिए और वे एक आड़ में कुछ और होना चाहिए तो ये से आप कितना सहमत छे कि सच एक महीन घटना होना चाहिए या ये सोशल मीडिया कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए
10: आजकल सोशल मीडिया तो साहब देखा द्विधारी तलवार छ सोशल मीडिया पर वहाँ का अलावा भी इन चाहिए कि हमूल एक्चुअल कर क्या चाहिए कि होम स्टे परिभाषा अमूल करी नहीं कुछ डेफिनेशन वे में होम स्टे और होटल द्वि का द्वि अलग छन हो तो पहले हमूल वे थे अलग कौन छो कि भाई होम स्टे क्या चाहिए होम स्टे तो क्या चाहिए कि भाई जन हम गौर में अपन जै हिसाब से रहन छा तो वे हिसाब से कोई भी पर्यटक हो तो हमार मतलब खान पीन हो गए या हम उधर रूबरू हो हमारे कल्चर से रूबरू हो तो वो एक कंच हमूल लेकिन हमूल की करते सब तो वो थोड़ा हमूत है वहाँ पर काम कर पड़ लो कि होम स्टे और होटल थे कैटेगराइज अलग कर पड़
9: अच्छा अभी हाल ही में सरकार की एक नई नीति बनी कि साहब अब दुई या चार ना बल्कि छह कमरा भी आप होम स्टे का तौर पर कह सकते हैं ये कितना मददगार हो
10: छह कमरा तो भेज सकते पर वहां में क्या चाहिए एक दिक्कत ये भी चाहिए कि अब हम तो वहां में लेबर रखन पड़ ली
9: मतलब
10: कोई भी तो वहां में क्यों उनकी जो गौरव फीलिंग जो फिर खत्म हो जाए
9: बिल्कुल
10: तो थोड़ा हम होता है और काम करने पड़ लो कि क्या हिसाब से हम वहाँ में सुझुट चाहिए आगे ने नीति वहाँ में पॉलिसी बनाई जाओ ताकि जो लोग छन लोकल लोग कहले कि वहाँ कॉन्सेप्ट इन होना चाहिए कि भाई जन दुई कमरा छन या चार कमरा छन तो वे तो हमारे मतलब जो घर में माँ बहनी छन उस सब मैनेज करना छन तो वे हिसाब से वे कामल होना चाहो
9: अच्छा एक बात हम ये देखना चाहूँ कि जो जो पर्यटक स्थल छन वगे का आसपास जो होम स्टे छन पर्यटन की गतिविधियां छन वो तो ठीक ठाक संचालित हो जाते लेकिन अगर हम दूरस्थ क्षेत्रों की बात करें और सुंदर रमणीक जगह छन चाहे बुग्याल छन बुग्याल का आसपास कोई गांव छन तो यूं गांव में पर्यटन की गतिविधियों थे या होम स्टे थे कनके हम विकसित कर सकते क्योंकि अभी वक उदगा नीच
10: हमू से वहाँ पर की करना पड़ लो कि हमू से मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ लो और एक मार्केटिंग बहुत अहम है तो वहाँ में सरकार बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकती वहाँ में कि मार्केटिंग जगह भी इन्फ्लुएंसर छन जो ठीक ठाक काम करना छन ऊँथे बोल कि भाई आप एक इनिशिएटिव करा ऊँथे थोड़ा बहुत जो भी फंड रिलीज करे जाओ कि आप ये जो भी लोकेशन यूँ थे प्रमोट करा तो वहाँ से इन बोल कि जब वो देश दुनिया में जाली तो लोकेशन एक बहुत ज्यादा छन हमूमा तमाम जगह छन कि जय में मतलब अभी संभावना भी जाम छन और वहाँ से एक फायदा इन बोल की जो भी ओवर क्राउडेड जो जगह छन वो थोड़ा वहाँ में लोड हमर कम होलो।
9: आप मीडिया जगत से भी जुड़े छन योगेंद्र जी, मीडिया सोशल मीडिया के रूप में पर्यटन थे सही तस्वीर देश और दुनिया का सामने में रखनी चे या अजी मीडिया का और सोशल मीडिया का क्षेत्र में बहुत कुछ करे जान पाए?
10: अभी तो वहां में बहुत कुछ होने चाहिए वहां में कले की कई चीज नेगेटिव भी जान है मतलब कई लोग छन जो नेगेटिव प्रचार प्रसार भी कर दन और कई लोग बहुत अच्छा काम भी करना छन वहां में तो बहुत कुछ वही सक दो और हमूत है मतलब जो काम करने पड़ लो संस्कृति पर हमूत है काम करने पड़ लो कले की हमारी संस्कृति और जगह से अलग कल्चर छ
9: बिल्कुल और विरासत का दगड़ ही विकास की बात होनी चाहिए बत पूरा उत्तराखंड में। अब आप अपने अनुभव का आधार पर क्या बोल सकते हैं कि कितना जो एक बोले जान के संभावना च रोजगार कन्मा हम और ज्यादा से ज्यादा जुटा सकते हैं, क्या पर्यटन का दगड़ी होम स्टे का दगड़ी कुछ और ही हम एकीकृत जो खेती च बागवानी च हमारा जो जवान दगड़ा छन ये रोजगार का और विभिन्न आयाम भी जोड़ सकते हैं?
10: ये तो देखा ध्यान जी कन पुड़ लो कले की एक वहां से तो काम नहीं छन कले की आप इंटीग्रेटेड मॉडल पर आप थे काम कन पुड़ लो जन बागवानी वे गए और वहां से इन फायदा होने की जो भी पर्यटक वाला तो ऊँथा हम घोरा सब्जी खिला ला या जो हमारा फ्रूट छन जो फल छन जो हमारा लोकल वो हम कुछ उत्पाद

0: तो ग्लोबल वार्मिंग वहाँ का वजह एक बहुत मुख्य कारण इसके लिए कि एक ही जगह पर टूरिस्ट आएगी नहीं तो वहाँ से जन गाड़ी आँदी और जब लोग हो इन्वॉल्वमेंट हों तो वहाँ पर एक तो वो घनत्व भी बढ़ वहाँ वही एरिया पर। तो वी मैं बात करूँ चाहूँ कि वे थे हम मुल्क कन की वे थे डिवाइड कन पुल हम बताए अलग अलग जगह हम होते शिफ्ट कन पुल टूरिस्ट एक तो वो बहुत महत्वपूर्ण वजह। और दूसरा क्या चाहिए कि जब हम एक जगह पर टूरिस्ट है टूरिस्ट फ्लो ऑन जब तो एक ही जगह पर तो वहाँ से उनकी जल स्रोत भी हमारा प्रभावित हो
1: बिल्कुल
0: तो वो हम तो बहुत महत्वपूर्ण कि वे पर भी हम ध्यान दें कहले कि पहाड़ों में जो मुख्य समस्या चाहिए पानी समस्या चाहिए जय टाइम पर सीजन पीक पर होंगे तो वही टाइम पर पानी उपलब्ध नहीं होंगे तो वो हम तो शिफ्ट कर पुर लोड जगह जगह
1: रूढ़ी का दिनों में पानी को संकट हित पर्यटकों को मुंडा रो जाते। अभी पिछले दिनों में देखना चाहिए कि सब पौड़ी और लैंसडाउन में पर्यटक परेशान चेन के साथ पानी नहीं आनो
0: बिल्कुल
1: ये बात हो रहे थे हम बड़ा ना। और जो ये बात अनियंत्रित विकास की गतिविधियां छन चाहे वो हम सड़क की बात कह लियो चाहे हम और सुविधाओं की बात कह लिया तो वे से हमारे पर्यावरण सबसे ज्यादा प्रभावित होने ये बात है किला नहीं समझे जानो
0: ये बात पर हम तो है बहुत ध्यान देन पड़ लो कहले कि आप देखा कि जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो मतलब वे हिसाब से नहीं होने कहले कि हमारा पहाड़ इतना मजबूत नहीं कि वो डेवलपमेंट सहन कर सको तो वे के हिसाब से हम मुल्कन जो काम कि जो भी जन रोडो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए या कुछ भी और काम होनी चाहिए तो वे पर हम थोड़ा सा इनकन चाहो कि पहाड़ अनुकूल नीति बनाना चाहिए ताकि प्रभावित नहीं।
1: अभी देखे आपकी चारधाम यात्रा में जितना भी यात्रा मार्ग छन और उनका आसपास बने हमारा नगर कस्बा छन ऊँ तो छोड़ दो वक्त खूब भीड़ भाड़ होनी चाहिए। अब हम देखना चाहूँ कि चलो साहब बाईपास कर दो ला तो जरा भीड़ कम हो जाए लेकिन अगर हम धामों की बात करें तो उनको जो नए स्वरूप बननो चाहिए बत कि वो एक अलग से नगर बननो चाहिए 5 सितारा होटल तक विकसित करे जाना छ तो ये तो हम पर्यावरणीय चुनौती कितना मान सकते और उस समय में क्या कुछ परिणाम भला रहा क्या
0: परिणाम तो ये ठीक नहीं होने के लिए कि आप देखा जो आपल भी बात बोल छो कि जो होटल होम स्टे कॉन्सेप्ट जो वो बिल्कुल अलग छो जब तक हम ये पर परिभाषित जब तक अलग नहीं करे तब अर्थात ये नहीं हो मतलब जन होम स्टे हम बुना चाहे तो होम स्टे 100 कमरा होम स्टे होगी जी तो वो तो संभव नहीं ना 100 कमरा का नहीं हो होम स्टे वो तो होटल ही छो।
1: और जब हम ऊंचाई वाला इलाकों में जबकि पारिस्थितिकी बहुत नाजुक छो बुग्याल छन वो ग्लेशियर छन और वोकमा हम बड़ा बड़ा निर्माण कला तो पक्की बात है कि केदारनाथ की जो त्रासदी छे वैसे हम तक कुछ सीखण होलू है ना। और आने वाले समय में ये चुनौती तो हम तक इन बोले जान कि ये चुनौती हम खुद ही लेना चाहूँ आप खातिर क्या सुझाव छन कि कन पर्यावरण या पर्यटन नीति होनी चाहिए ये राज्य में
0: ये राज्य में होने जानू साहब देखो 2013 जो आपदा आए छे वैसे हम लोग कुछ सीख नहीं ले वे उल्टा होगी कि हम लोग कंस्ट्रक्शन और ज्यादा कर दे तो हम तो जो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वे पर भी थोड़ा लगाम लगाउन पड़ ली एक मानक तय करना पड़ ला ताकि जो पहाड़ छन वो प्रभावित नहीं हुआ। और दूसरी ये चूँकि जो मिल बात करें जल स्रोत वे पर भी हम तो ध्यान देन पड़ लो जल स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है जान कर लेकिन अब जन जून और महीना चाहिए तो अगर टूरिस्ट ऑफ फ्लो सबसे ज़्यादा होंगे तो पर्यटक आनंद तो पानी उपलब्ध नहीं हो तो वहाँ से क्यों उनकी नेगेटिव एक मैसेज भी जान वहाँ से ना नकारात्मक एक मैसेज जान दो तो ये पर मुख्य बिंदु छन जो 2-3 और क्लाइमेटिकल चेंज सब तमाम चीजों पर हम तो ध्यान देन पड़ लो और एक पॉजिटिव जो टूरिस्ट जो वे थे हम है लौट पड़ लो।
1: बिल्कुल ठीक बोली आपन इस सुझाव छन कुछ कि संतुलित पर्यटन नीति बने जा और पर्यावरण थे वे में सबसे ऐंच रखे जा बाद में बाकी चीज छन और रोजगार की बहुत संभावनाएं छन लेकिन वही था अभी ढूंढने की जरूरत छ संभालने की जरूरत छ जिनके आपन भी अपन बातचीत में बताया योगेंद्र जी की हम टूरिस्ट गाइड बन सकता हम ट्रैकिंग का नया नया छोटा छोटा वो ढूंढ सकता और होम स्टे में तो बहुत कुछ कि पूरा परिवार भी अगर रोजगार मिल गयी हो तो सुंदर बात होनी चाहिए तो रोजगार भी पर्यटन पारिस्थितिकी पर्यावरण सब कुछ लेकिन हाँ जरूरी है कि हम एक संतुलित पर्यटन और पर्यावरण नीति थे अपनाऊं। योगेंद्र जी आप कार्यक्रम में सुंदर चर्चा आपक दगड़ हुई बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपको।
2: श्रोताओं अल्ले आपल सुन पर्यटन और स्वरोजगार विषय पर भेंट वार्ता जयमा श्री योगेंद्र सिंह रावतक दगड़ बातचीत करना छी हमर सहयोगी श्री विनय ध्यानी। उम्मीद छू कि आपको यह भेंट वार्ता भल लागे हुनल और जो भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी छन उनर लीजी जानकारी मिले हुनल और ऊँ भी अगर अपन काम धंधे शुरू करण चाहनी पर्यटन में तो भाई उनर लीजी जरूर कुनी ना जानकारी मिले हुनल भल जानकारी मिले हुनल। श्रोताओ अब आपको ले जानू कुमाऊँ की तरफ और सुनो आपको मीनाविष्ट का शर्मा या कुमाऊनी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन सिवा सरगम की आवाज़ माँ सुंदर सा जौनसारी गीत और गीतक बाद अब भगत है गो उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का कह जन जाया दूसर पारी माँ हम यह छिन सुनो उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: It's another six.
5: रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
6: मैच तो गया।
5: पेमेंट कैसे करेंगे?
7: टोकनाइज कार्ड से।
6: टोकन?
7: हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित।
6: ऑलराउंडर
7: ओके मैं। RBI कहता है कि
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में 110 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कंडोली महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने खेत में चलाया टिलर, पारंपरिक कृषि और जैविक खेती को बढ़ावा देने का दिया संदेश। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शुरू। टिहरी जिले के चंबा विकासखंड में लोगों को रीकेवाईसी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। और सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी के रामलीला मैदान में आयोजित कंडोलिया महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के लिए 110 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंडोलिया महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम है। श्री धामी ने कंडोलिया महोत्सव को सरकारी कार्यक्रम के तहत राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।
10: कंडोलिया महोत्सव हमारी लोक विरासत, लोक संस्कृति का बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, हमारे बच्चों को भी आगे आने का अवसर मिलता है, हमारी विरासत भी आगे बढ़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास, उस मंत्र को भी ये साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम करता है। और इससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ की अन्य गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों को लोगों को भी जो है इसमें सहभाग करने का अवसर मिलता है।
9: इससे पहले मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिला मुख्यालय में आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने संग्रहालय का भ्रमण कर विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित इंटरैक्टिव मॉडल, वैज्ञानिक प्रदर्शनी और आधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संग्रहालय जिले के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, जिज्ञासा और नवाचार का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और वैज्ञानिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा स्थित अपने निजी आवास नगला तराई स्थित खेत में टिलर चलाकर खेत की जुताई और खेत में गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। इस दौरान उनकी माता बिश्नी देवी भी उनके साथ उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि को अधिक समृद्ध और टिकाऊ बनाया जा सकता है।

0: उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया है।
1: मैंने भी अपने खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉयल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं जिससे कहीं न कहीं सॉयल को नुकसान होता है, उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है और संतुलित रूप से रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग करना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में 12 वर्षों की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तराखंड के विकास को नई गति दे रही है।
2: मोदी जी ने जो है निश्चित रूप में मुक्त हस्त से उत्तराखंड को पूरी सहायता दी है। इस समय 3,808 करोड़ की जमरानी बांध परियोजना जो है चल रही है, 2,600 करोड़ की सौंद बांध परियोजना है, 3,966 करोड़ की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना, उस पर तेजी से कार्य चल रहा है। तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एलिवेटेड ट्रैक बनाया, तो निश्चित रूप में बहुत कुछ सौगात जो है मोदी जी ने दी।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 15 जुलाई तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को बैंकिंग, बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसी क्रम में आज टिहरी जिले के चंबा विकासखंड सभागार में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और रीकेवाईसी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मनीष मिश्रा ने बताया कि जिले की सभी 1049 ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
4: इसमें क्या है कि बैंकों के द्वारा जो जिले की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं सभी में जाकर भारत सरकार का जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो लाई गई, सुरक्षा बीमा योजना जो लाई गई थी, इसके अलावा जो जनधन खाते खोले गए थे, निष्क्रिय पड़े जनधन खातों को एक्टिव करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत उनको एनरोल करना, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करना, इसके अलावा केवाईसी खातों में जो केवाईसी है वो करना, सीकेवाईसी करना, प्लस जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं ये इस दौरान जो पंचायतों में जो अपना कैंप लगेगा वहां पे बैंकों को इस प्रकार की सुविधाएं लोगों को देनी।
0: वहीं कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सियोटा ग्राम सभा की सीमा भंडारी ने बताया कि शिविर के माध्यम से उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई है।
5: यहाँ पे जो भारत सरकार की जो स्कीम है SBI के तहत जो वित्तीय समावेशन है, जितनी भी महिलाओं को जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, जैसे KYC हो गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, जीवन ज्योति बीमा हो गया, सुरक्षा बीमा हो गया, इसके लिए गांव-गांव में जाकर भारत सरकार के द्वारा मतलब मोटिवेट किया जाता है। इसी के तहत आज यहाँ पे चंबा विकासखंड भवन में जितने भी ग्राम संगठन है, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, सभी को यह जानकारी दी गई है।
0: सोमवती अमावस्या पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरे शहर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा।
6: हमारी तीनों बहनों के साथ में और हमारे धर्मपत्नी को साथ में लेकर आए हैं स्नान करने के लिए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था के लिए कोई कमी नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है स्नान करने के लिए। यहाँ मतलब ये बहुत उत्सव है, हर आदमी के अंदर मतलब जज्बा है। सोमोती अमोस का भी हम नारे हैं और हर की पेड़ी का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए हमें यहाँ स्नान करने के लिए आए।
7: सोमावती अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए। यहाँ का जो नजारा है गंगा मैया का वो देखने और स्नान करके इतनी शांति मिल रही है, बहुत बढ़िया। सारे लोग आनंद से बड़े आराम से सारी जनता नहा रही है।
0: वही सोमवती स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य और सफल बनाने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। आज सुबह पिथौरागढ़ में रन फॉर योगा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में रामलीला मैदान तक आयोजित इस जागरूकता रैली में जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स, 14वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों से छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वक्ताओं ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने का संदेश दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में 110 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कंडोलिया महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने खेत में चलाया टिलर, पारंपरिक कृषि और जैविक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शुरू। टिहरी जिले के चंबा विकासखंड में लोगों को रीकेवाईसी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। और सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: It's another six.
9: रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा।
10: ये क्या किया?
11: मैच तो गया।
9: पेमेंट कैसे करेंगे?
12: टोकनाइज कार्ड से।
11: टोकन?
12: हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित, बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित।
11: ऑलराउंडर
12: ओके भाई। RBI कहता है कि
13: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
14: उत्तराखंड प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत छो अपन बोली भाषा की ये कार्यक्रम ग्राम जगत मां मिचो आपक दगड़ गीता भंडारी। श्रोताओ, जैव विविधता की बात करनो के लिए कि आजकल वक्त में यो एक कुनीना के ज्वलंत मुद्दे छो। जैव विविधता का संरक्षण धरती में मौजूद सभ्य जीवों को बचोण एक बहुत जरूरी प्रक्रिया छो। हमार धरती में कई प्रकार के डाल बोट, पशु पक्षी और छोट छोट जीव पाई जानी। इनर मौजूदगी को ही हम जैव विविधता कुनी। हम इंसानों का जीवन इन सबों पर निर्भर रहूँ। यह लीजिए जैव विविधता का रक्षाकरण हमारा सबसे ठुल कर्तव्य छू। जैव विविधता ही छू जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए धरें। आजकल भगत माँ हम इंसानों अपूर्ण जरूरत कारण जैव विविधता के खतरे में डाली है। लगातार होने वाले जंगलों कटाई बढ़ने, लगातार प्रदूषण, अवैध शिकार और जंगलों में लागण वाल बार बार जो आग छू, वेल जलवायु परिवर्तन होने और धरती के जो तापमान छो ना उले लगातार बढ़ने और जेल कह सकनु हम कि असमय जो मौसम मु बदलाव छो ना उले उड़े। अगर हम यह निराकरण के लीजिए हम के कर सकनो, हम अगर सोचो तो भाई हम सब मिलबेर ज़्यादा से ज़्यादा डालबोट लगाऊँ, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूँ और पानी और बिजली की बचत ले कर सकनूँ। जानवरों और चढ़ पुथलों के लीजिए अपन मन में दाय भाव धरूँ। जंगलों में लगने वाले जो आग छो को बार बार नहीं लगाऊँ तो एक हद तक हम अपन प्रकृति के सुंदर और सुरक्षित बनाए रख सकनूँ। तबे हमार जो जैव विविधता छो ना उले बढ़ी रहल और हमार जो उड़ी वाली पीढ़ी छू उगुले शुद्ध हवा पानी भरपूर मात्रा में मिल सकल। तो हमको सब लोगों को ये विषय पर ध्यान देने की बात छू कि लेकिन यह प्रकृति हमार छू, यह धरती हमार छू और केवल हमारा लीजिए ना बल्कि हमार आण वाली पीढ़ी की एक बहुत ज़रूरी ज़रूरत ले छू। श्रोताओं, इन छह बातों का दगड़ी ही अब कार्यक्रम में शामिल करनो आज को अंतिम गीत और गीत मस्वर्च शांति बिंजोला और उनर दगड़ियांक।

श्रोताओं, अल्ले आपेल सुन शांति बिंजुला और उन दगड़ियों की आवाज़ माँ यो सुंदर सा गढ़फाली गीत। उम्मीद छू कि आपको यो गीत पसंद आए हुनोलो। आज को ग्राम जगत को अंकले आपको जरूर पसंद आए हुनोलो। आपको कार्यक्रम कस लागो आप लिख भेज सकर छा चिट्ठी gramjagat@gmail.com पर। इन छह बातों का दगड़ ही आज को ग्राम जगत को अंक इति समापन करने की गीता भंडारी को दियो अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 6:50 होने को हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटेन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचार उगदगढ़ मी ममता बडोला। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन पौड़ी गढ़वाल में 110 करोड़ रुपयों से ज्यादा के 19 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित हुआ। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम की स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उत्साह दगट मनाया गया। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनः परीक्षा को प्रवेश पत्र जारी कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन आज पौड़ी गढ़वाल में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव में 110 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत को 19 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर। ये मौके पर ऊनवाल की ये परियोजनाएं क्षेत्र के आधारभूत ढांचों तक सुदृढ़ बनाने को दगड़ दगड़ आम मनखी को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल। मुख्यमंत्री ने कंडोलिया महोत्सव तय पौड़ी को सांस्कृतिक पहचान और जनभागीदारी उत्सव बतान वाल की यू स्थानीय कला संस्कृति और प्रतिभाओं तय मंच प्रदान करने दगड़ दगड़ पर्यटन तय भी प्रोत्साहित कर।
2: कंडोलिया महोत्सव हमारी लोक विरासत लोक संस्कृति का बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, हमारे बच्चों को भी आगे आने का अवसर मिलता है, हमारी विरासत भी आगे बढ़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास, उस मंत्र को भी ये साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम करता है। और इससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ की अन्य गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को लोगों को भी जो है इसमें सहभाग करने का अवसर मिलता है।
1: एक बीच मुख्यमंत्री ने जिला विज्ञान संग्रहालय श्रीनगर में विकसित आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण करी। ऊनवाल की यू संग्रहालय केवल एक प्रदर्शनी स्थल नहीं बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं को आधुनिक विज्ञान शिक्षा नवाचार और अनुसंधान तय प्रोत्साहित करने वालू महत्वपूर्ण केंद्र वाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन आज नगला तराई स्थित एक पुंगड़ में टीलर चलेक ने जुताई करी और मोलक प्राकृतिक खाद डालिकन जैविक और पारंपरिक खेती तय बढ़ावा दृढ़ संदेश दिया। ये मौके पर मुख्यमंत्री ने पुंगड़ों में मेहनत कर्द किसानों परिश्रम और कृषि परंपराओं को महत्व तय रेखांकित करी। ऊनवाल की खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधारशिला है। श्री धामीनवाल की आधुनिक तकनीक दगड़ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती तय अपनाए कर कृषि तय ज्यादा समृद्ध टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बने सकते। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य आयोजनों को औपचारिक कार्यक्रमों को शुभारंभ कर। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर करे जा। उन्होंने बताया कि ये मौका पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित करे जाल। श्री जाधवन बोल की योग लोगों तय हर उम्र में स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में

0: मैं तो पूर्ण भूमिका निभा।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: ये साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन कुणु योग।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताज़ा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धामक आज स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह दगड़ी मने जानु छु। ये मौका पर आयोजित भव्य मेला में श्रद्धालुओं को जन सैलाब उमड़ियों छु। जिला प्रशासन के अनुसार सुगम दर्शन, निर्बाध यातायात और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के चलते श्रद्धालु बिना कै भी परेशानी के बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करना छन। जिलाधिकारी ललित मोहन रयालन बताया कि कैंची धामक पावन प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर श्रद्धालुओं को सुविधा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं करी छन।
3: प्रातः 5 बजे से यहां पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और 800 से ज्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें रोडवेज, केमू और निजी क्षेत्र की बसें सकल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं, छोटे मैक्स वाहन भी हैं, उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं में बढ़ चढ़कर उत्साह है, कतार में शांतिपूर्वक वो अपना आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा हर प्रकार की दर्शन से लेकर महाप्रसाद वितरण तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग मार्ग हैं।
0: उना सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर आज हरिद्वार में आज तक जन सैलाब उमड़ियों छो। अधिमास माह पड़ने वाले ई विशेष सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत अलग अलग गंगा घाटों पर पहुंचीन और पवित्र गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करीन। स्नान पर्व के दौरान पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बन्यो छे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला कुणु नीट UG पुनः परीक्षक प्रवेश पत्र जारी करें। प्रवेश पत्र NTA के आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in बिटेन डाउनलोड कर सकता। यह परीक्षा 21 जून कुणु दोपहर 2 बजे बिटेन शाम 5:15 तक फेल। ये बीच NTA ने विद्यार्थियों से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड गुणों अपर बैंक खाता का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों तय ध्यान से पढ़ने की सलाह भी दिए गए। पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौड़ी स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने विद्यार्थियों को BCA पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर इससे प्रदेश के युवाओं तय कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जन उभरत क्षेत्रों में करियर बनाने का मौका मिलल। संस्थान के निदेशक डॉक्टर BK बंगन बताया कि यह पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग के दगड़ दगड़ कला वर्ग के विद्यार्थी भी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश ले सकल। ऊनवाल की BCA पाठ्यक्रम विद्यार्थियों तय रोजगार परक तकनीकी कौशल प्रदान कर और उच्च शिक्षा, उद्यमिता तथा स्टार्टअप क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में सरकार को उपलब्धियों तय जन जन तक पहुँचाने को विशेष अभियान चलानी छे। ये कर्म में आज हरिद्वार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार 12 वर्षों को प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दिया। श्री महाराजन बाल की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछला 12 सालों के दौरान भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर उन बाल की केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंची, जैसे गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों को जीवन स्तर में सुधार आए। कैबिनेट मंत्री बाल की प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और डिजिटल इंडिया

योजनाओं देशक विकास ते नए दिशा प्रदान कर दगड़ी राज्य में पर्यटन गतिविधियों और रोजगारक अवसरों में भी वृद्धि है। उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशालक दर्शन करीन ये मौके पर श्री अंबानी धामक विकास और धार्मिक व्यवस्थाओं को 5 करोड़ रुपयों की धनराशि दान स्वरूप प्रदान कर। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल में 110 करोड़ रुपयों से ज्यादा की 19 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित फल। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धामक स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उत्साह दगड़ मने गए। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनः परीक्षा को प्रवेश पत्र जारी कर। एक दगड़ी गढ़वली में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हो। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बजने को है श्रोताओं, और प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान साथियों राम राम। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत, और आज आपके साथ मैं हूं कुलदीप सिंह। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां देते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान साथी नई नई जानकारी हासिल कर जागरूक हों और अपनी फसल से अच्छी आय प्राप्त करें। इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे मोटे अनाजों का उत्पादन, इसके अलावा पशु आहार प्रबंधन पर भी चर्चा करेंगे। भेंटवार्ता का विषय रहेगा मक्के की उन्नत खेती। श्रोताओं, प्रकृति ने जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ मनुष्यों के लिए भोजन की सुगम व्यवस्था भी की है। खाद्यान्न से लेकर सब्जी फल दूध की उपलब्धता इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। पुराने समय में मनुष्यों के सेहत का राज भी यही खाद्यान्न होते थे। समय के परिवर्तन के साथ इन खाद्यान्नों का उत्पादन भी कम हो गया। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोटे अनाजों के बारे में, जिनमें पोषण के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता वाले गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों, अधिकांश मोटे अनाज भारत मूल के ही हैं। हमारा देश दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हम विश्व उत्पादन का लगभग 43% हिस्सा पैदा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ये फसलें कम पानी और बिना रासायनिक खाद के शुष्क क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं। किसान साथियों, मोटे अनाजों में अच्छी मात्रा में रेशा होने से पाचन तंत्र अच्छा रहता है। इससे कब्ज, पेट फूलना, सूजन, ऐंठन जैसी परेशानियां कम से कम होती हैं। इसके सेवन से किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इसके नियमित सेवन से मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलती है। श्रोताओं, हमारे उत्तराखंड में भी अनाज की समृद्ध परंपरा सदियों से रही है, लेकिन ग्लैमर के इस युग में बाजारीकरण ने अपनी जगह बनाई, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में उगाए जाने वाला मोटा अनाज धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। अब जब लोगों में इस मोटे अनाज को लेकर जागरूकता आई है, तो सरकार भी वापस इस मोटे अनाज के उत्पादन बढ़ाने की ओर अब ध्यान दे रही है। इन अनाजों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से इस समय कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए आप नज़दीकी कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं ये लोकगीत, लेकिन उससे पहले सुनिए ये जरूरी संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100+ AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.

0: श्रोताओं, इस लोकगीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे मोटे अनाजों के उत्पादन पर। अब आपकी भेंट करवाते हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी से। भेंट वार्ता का विषय है मक्के की उन्नत खेती। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी से बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी विकास चमोली जी।
1: किसान साथियों, आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी। और आज डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे मक्का की खेती किस तरह से हमारे किसान साथी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी।
1: डॉक्टर साहब, मक्का की हम बात करें तो चाहे चारे के लिए हम इसका इस्तेमाल करें, पॉपकॉर्न के लिए, भुट्टे के लिए, या फिर अनाज के लिए, और अब क्योंकि बिजाई का समय है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे पहले हमारे किसान साथियों के लिए ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि मक्का की बिजाई हमारे किसान साथियों को किस समय तक कर देनी चाहिए।
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और कुछ सवालों का जवाब विकास जी आपने खुद ही दे दिया। जैसे मक्का हमारे देश की एक प्रमुख फसल है, खास तौर से अगर हम बात करें धान और गेहूं के बाद मक्का एक तीसरी धान्य फसल है। लेकिन मक्का का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। इसका इंडस्ट्रियल रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एथेनॉल बनाने में किया जा सकता है, स्टार्च बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा मक्का से पॉपकॉर्न है, बेबी कॉर्न है, बहुत सारी फसलों के रूप में मक्का का प्रयोग किया जा सकता है। मक्का का जो दाना है वो अधिकतर हमारे देश में जो मुर्गी पालन होता है उसका जो फीड बनता है, उसका जो दाना बनता है, उसमें ज़्यादातर मक्का के दाने का ही प्रयोग किया जाता है। मक्का की बुआई खास तौर से खरीफ ऋतु में की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रदेश हैं, जैसे बिहार है, वहाँ पर मक्का की बुआई जो रबी में भी होती है। उत्तर प्रदेश है, उसमें भी रबी में भी हो जाती है। इसके अलावा मक्का की फसल को हम बसंत ऋतु में भी की जा सकती है। तो मक्का एक बहुत ही ऐसी फसल है जिसको हम वर्ष भर उगा सकते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, जो हमारे प्लेन एरियाज है, जो हमारी वैलीज एरियाज है, उसमें हम 15 जून से लेके 15 जुलाई तक जो है मक्का की फसल की बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा हिल एरिया है उसमें हम मक्का की जो बुआई करते हैं वो मई के अंत से लेके लगभग जून के मध्य तक बुआई हमें खत्म कर लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर किसान भाई बुआई पर समय का ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से उनको अच्छी पैदावार जो होगी।
1: जी, और आप क्योंकि डॉक्टर साहब बरसात भी होने लगी है तो किसान साथी इंतजार में थे कि जैसे ही बरसात होगी फसलों की बिजाई करेंगे, तो हमारे किसान साथी बिजाई कर सकते हैं?
2: बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया कि जो बहुत सारे इलाके हैं जो हमारे, जैसे हमारा प्लेन है, हमारे वैलीज एरिया है, वहाँ पे मक्का की जो बुआई जो है 15 जुलाई तक बड़े आराम से हो जाती है और बहुत ही अच्छी उसकी पैदावार होती है। लेकिन जो हमारे कुछ हिल एरियाज हैं, जैसे मैंने मक्का की बताया, मक्का जो है एक ऐसी फसल है जो समुद्र तल से लेकर के 3000 मीटर की हाइट तक बड़ी अच्छी तरीके से पैदा हो सकती है। अच्छा। तो ऊपर के जो हमारे एरिया है, जो हमारे पहाड़ के ऊपर के एरिया है, वहाँ मई के अंत से लेकर हम मध्य जून तक इसकी बुआई करते हैं। लेकिन जैसे अगर बारिश ही नहीं हो उस स्थिति में हम जो है उसकी बुआई को थोड़ा जून के लास्ट तक भी हम कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि

0: मक्का को कई रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चारा के लिए, भुट्टे के लिए, पॉपकॉर्न के लिए, या फिर अनाज के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि इतने सारी जगहों इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके लिए कई सारी प्रजातियां भी होंगी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा इस बारे में हम जानेंगे कि कौन सी प्रजाति किसके लिए उपयुक्त रहती है। अगर किसान साथी चारे के लिए लगा रहे हैं तो उन्हें कौन सी प्रजाति लेनी है, अनाज के लिए लगा रहे हैं तो उन्हें कौन सी प्रजाति का चयन करना है।
1: आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है विकास जी। लेकिन मक्का की जो प्रजातियां हैं बेसिक तौर पे अगर हम आनुवांशिक आधार पे हम देखें मक्का को, तो उसकी दो जातियों में इसको बांटा गया है, एक संकर किस्मों में और एक
0: अच्छा
1: संकुल किस्म। जो संकुल किस्म है उसका जो बीज है हम 3-4 साल तक उस लगातार लगा सकते हैं, लेकिन जो संकर किस्में हैं उसका बीज हमें हर साल नया खरीदना पड़ता है। बहुत
0: अच्छा
1: सारे किसान भाई अगर संकर किस्म लगा रहे हैं अपने खेत में और अगले साल उसको बीज का प्रयोग करते हैं, तो एक तो उसके जो आनुवांशिक गुण हैं उसके खत्म हो जाते हैं और पैदावार में उसके भारी कमी आती है। इसके अलावा जो मक्का है, मक्का को हम उसके ड्यूरेशन के आधार पर, उसकी अवधि के आधार पर, पकने की अवधि के आधार पर भी 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं जो लगभग 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती हैं। इसमें
0: अच्छा
1: मुख्य रूप से अगर हम संकुल मक्का की बात करें, इसमें कंचन है, गौरव है, सूर्या है, विवेक है। विवेक संकुल मक्का 11, 31, 35, 37 बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको हम इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम संकर मक्का की बात करें,
0: जी
1: इसमें पंच संकर मक्का 1 है, 4 है, 5 है, विवेक संकर मक्का 21 है, 23 है, 25 है, 33 है, 40 है, 47 है, 53 है। इतनी दुनिया भर की प्रजातियां मक्का की हैं जिनको किसान भाई छांट करके अपने हिसाब से जो भी उनको अवेलेबल हो उसको लगा सकता है।
0: जी
1: इसके अलावा जो मध्यम अवधि की जो प्रजातियां हैं उसमें जो मुख्य रूप से आती है, उसमें जो 80 से 90 दिन में जो प्रजाति तैयार हो जाती है उसको हम मध्यम अवधि की प्रजाति कहते हैं। इसमें अगर हम संकुल की बात करते हैं, इसमें तरुण है, नवीन है, किरण है। अगर हम संकर की बात करें तो इसमें पंच संकर मक्का 6 है, HM 4 है। इसके अलावा जो देर से मक्का तैयार होती है, जिसको देर का मतलब जो ज्यादा दिन में तैयार
0: जी
1: होती
0: जी
1: है,
0: जी
1: ये मक्का जो लगभग 90 से 100 दिन लेती है। इसके
0: अच्छा
1: लिए में भी जो संकुल मक्का की अगर हम बात करें, इसमें भी दो तीन प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। इसमें किसान है, विजय है। इसके अलावा अगर हम संकर मक्का की बात करें इस अवधि के लिए, तो इसमें HM 11 है, HQPM 1 है और 4 है। अगर हम थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो हमारी संकुल मक्का है उसमें विवेक संकुल मक्का 11 है और VL मक्का 37 है। इसके अलावा कंचन भी और नवीन को भी हम पर्वतीय क्षेत्र में लगा सकते हैं। अगर हम संकर मक्का की बात करें तो इसमें विवेक संकर मक्का 5 है, 9 है, 21 है, 23 है, 25 है, 33 है, 39 है, 47 है और 55 है। ये इतनी प्रजातियां मक्का की हैं जिसमें से किसान भाई किसी को भी छांट करके लगा सकता है उसको। जैसे मैंने ये अवधि क्यों बताई, मैंने अवधि इसलिए बताई अगर कोई किसान भाई किसी कारणवश समय से मक्का अपनी थोड़ा
0: नहीं
1: लेट हो
0: लगा।
1: गया या बारिश का कुछ ऐसा बन गया कि बारिश नहीं हो पाई,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: कम अवधि वाली मक्का को वो थोड़ा लेट करके
0: लगा
1: लगा सकता
0: सकता
1: है।
0: है।
1: तो ये किसान भाई के लिए एक ऑप्शन मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपने मेरे से जैसे चारे की बात की, चारे के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है अफ्रीकन टाल है। और
0: अच्छा
1: स्वीट कॉर्न में अगर हम बात करें, इसमें शुगर 75 है और HMC 1 है। इसके अलावा मैंने पॉपकॉर्न की बात की थी, पॉपकॉर्न में हमारा पंत पॉपकॉर्न 1 है,
0: अच्छा
1: इसको किसान भाई लगा सकते हैं। बेबी कॉर्न में जो है HM 4 है और VL बेबी कॉर्न 1 है, जिसको किसान भाई लगा सकता है। तो इतनी प्रजातियां हैं जो मैंने बताई आपको, जिसका प्रयोग किसान भाई करके अपना फायदा ले
0: जी,
1: सकता है।
0: कई सारी प्रजातियों के बारे में डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान साथियों को बता दिया, और अब हमारे किसान साथी भी समझ गए होंगे कि उन्हें किस प्रजाति का चयन करना है और किसकी बिजाई करनी है। अब थोड़ा सा बीज की बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा बीज की आवश्यकता होती है।
1: मक्का की जैसे मैंने बताया दो प्रकार की प्रजातियां होती हैं, खास तो प्रजातियां भी मान लो, इसमें एक में संकर है और एक संकुल है।
0: जी
1: संकर मक्का में थोड़ा बीज ज्यादा लगता है, इसमें लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर हम प्रयोग करते हैं,
0: अच्छा
1: और जो संकुल मक्का का बीज है वो 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर लगते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को बुआई के समय हमें ध्यान रखें, बुआई हमेशा लाइनों में करें।
0: अच्छा
1: लाइनों का मतलब ऐसा होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो अगर हम देखें उसमें 60 से 75 सेंटीमीटर की रखें, और पौधे से पौधे की दूरी जहां बीज आपने डालना है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर आप रखें। तो इससे क्या होता है कि पौधे की अगर आपने लाइनों में लगाया है तो पौधा जो हवा है, दूसरी जो चीजें हैं, उस एक तो पौधा कम गिरता है, दूसरे में जो जो प्रकाश उसको मिलता है सभी पौधों को समान रूप से मिलता है, और उसमें बीच में जो निराई गुड़ाई अगर हम करते हैं और जब खाद की दूसरी प्रक्रिया हम करते हैं, खाद डालना या दूसरी चीजें करना, खरपतवार निकालना, ये किस इन चीजों को किसान भाई बड़े आराम से कर सकता है।
0: और इससे फसलों की बढ़ावार अच्छी होगी।
1: बहुत बच्चों की अच्छी परवार से होती है। इसके अलावा किसान भाई एक चीज और जरूर ध्यान रखें, जब भी आप बुआई करें बीज को किसी

0: हाँ जी, साइड से खास तौर से थायरम है उसकी लगभग 3 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज में लगा करके जरूर उपचारित करें, ताकि उसमें बहुत सारी बीमारियां आने से पौधे को बच जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीज उपचारित हमारे किसान साथियों ने कर लिया, तो खेत तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किन खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है?
0: क्योंकि खेत की तैयारी
1: जी
0: और खेत का चुनाव ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है अगर उसमें पानी खड़ा हो जाता है तो फसल पूरी की पूरी फसल कभी कभी बर्बाद हो जाती
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो इसके लिए हम कोशिश करें कि हम ऐसी जगह का करें या खेत में जल निकास का प्रबंध जरूर करें। जहां तक तैयारी की बात है, इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुलाई हैरो से करके और पाटा लगाने से आपका खेत जो जब भुरभुरा हो जाता है तो किसान भाई जो है बुवाई कर
1: कर
0: सकते हैं।
1: सकते हैं।
0: अगर हम खाद की बात करें, देखो सभी पौधे जो हम बात करते हैं, अगर खेती की बात करें, इसमें खास तौर से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट, इनकी भी पौधों को आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने संतुलित मात्रा में अगर उसको आप खाद देते हैं, निश्चित रूप से आपकी जो फसल है वो अच्छी होती है। तो मक्का के लिए हम 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास जो है हम प्रति हेक्टर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप जब बुवाई करते हैं या जब खेत की आप तैयारी करते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो 15 से 20 टन अगर आपके पास गोबर की खाद है, तो बुवाई के समय, खेत की तैयारी के समय आप उसको मिट्टी में जरूर मिलाएं, ताकि मिट्टी भी अच्छी हो और पौधों को जो उसकी तत्वों की जो
1: पर्याप्त
0: उपलब्धि
1: पोषक तत्व
0: पर्याप्त
1: तो मिल
0: मात्रा
1: जाए।
0: में मिल जाए उसको।
1: जी, डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया काफी विस्तार से कि किस तरह से हमारे किसान साथी खेत तैयार कर सकते हैं। अब क्योंकि फसल की बिजाई हमारे किसान साथियों ने कर ली, अक्सर देखा जाता है कई सारे रोग और कीट भी हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं, तो कौन कौन से रोग और कीट लगने की समस्या हमारी फसलों में रहती है?
0: आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जैसे हम अभी हम खाद की बात कर रहे थे, रोग और बीमारी जो जब कीट हैं तब ही लगते हैं जब संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग ना किया हो। जैसे
1: अच्छा
0: मैंने अभी नाइट्रोजन की बात की, अगर केवल किसान भाई नाइट्रोजन की अधिकता प्रयोग करते हैं या बाकी तत्वों का प्रयोग नहीं करते तो बीमारी और कीड़ों की संभावना ज्यादा रहती है। खास तौर से जैसे मैंने नाइट्रोजन की बात करी,
1: जी
0: 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की बात मैंने आपको बताई, तो इसकी आपने 1/3 नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास या जिंक अगर आप डालना चाहते हैं, उसकी पूरी मात्रा आप बुआई के समय, जब आप बुआई कर रहे हैं उस समय आप खेत में इसको डाल दें। लेकिन नाइट्रोजन की बाकी मात्रा जो 3/4 मात्रा जो बचती है उसको 3 बराबर भागों में बांट करके, एक तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद, और एक आपकी फसल जब घुटने के बराबर हो जाती है, और एक फसल में जब आपके नर मंजरी जिसको आ जाती है, जिसको हम टेस्लिंग स्टेज बोलते हैं, उस समय आप प्रयोग करें। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका जो खाद का जो उपयोग क्षमता है वो बढ़ती है और बीमारियां भी कम आती है, क्योंकि पौधे को जो समय अनुसार खाद जो उपलब्ध होती रहती है। मक्का में तो बहुत सारे रोग और कीट लगते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जीवाणु मुगलन और धारीदार मर्दुल आशिता, ये जो मुख्य रोग इसमें आते हैं, इसके लिए हम, अगर आपके इसमें लगा हुआ जीवाणु विगलन, इसके लिए 1.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 15 लीटर पानी में घोल करके आप जो पौधों की जड़ों के पास इसको स्प्रे कर दें। इसके अलावा अगर आप धारीदार मृदुल आशिता उसमें लगी हुई है, इसके लिए आप मैनकोजेब जो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर आप स्प्रे करेंगे तो इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। कीट की बात करते हैं, मक्का में बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन जो मुख्य कीट लगते हैं, एक तो छना छेदा लगता
1: जी
0: है, परवो मक्खी लगती है और सैनिक कीट लगता है। सैनिक पतझड़ कीट जो कभी कभी पूरी फसल को नष्ट कर
1: नष्ट
0: देता
1: कर
0: है। हाँ,
1: देता है।
0: इसके लिए अगर हम इनके कंट्रोल की अगर हम बात करें, आपका जो तना छेदक है, परवो मक्खी है, इसके लिए डाईमिथोएट एक दवाई आती है, उसको 1 से 1.5 मिलीलीटर दवाई को 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसका स्प्रे कर देंगे तो आपका तना छेदक और परवो मक्खी इसमें नहीं लग पाएंगे और उसको नुकसान जो ज्यादा नहीं कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, विरलीकरण, खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई करना मक्का के लिए कितना जरूरी है?
0: बहुत ही जरूरी है, विरलीकरण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बुआई करते हैं कभी कभी पौधे की संख्या बहुत ज्यादा हो
1: बहुत
0: जाते
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो जाती है।
0: तो हमें, जैसे मैंने बताया कि पौधे से पौधे की दूरी, लाइन तो हमने बना ली, ये जैसे मैंने कहा 60 से 75 सेंटीमीटर की लाइन से दूरी हम रखते हैं,
1: जी
0: लेकिन जब पौधे मान लिया हम बुआई करते हैं तो कभी कभी बीज ज्यादा पड़ जाता है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर जो पौधे से पौधे की दूरी पर आप छोड़ करके बाकी पौधों को निकाल दें,
1: निकाल लें।
0: ताकि आपका पौधा जो स्वस्थ रहे, उसको भरपूर मात्रा में धूप और प्रकाश जो मिले।
1: जी इसके अलावा डॉक्टर साहब, सिंचाई की हम बात करें तो मक्का के लिए वैसे तो कहा जाता है कि ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके अलावा भी अगर बरसात कम हो रही है तो किसान साथियों को किस किस अवधि में सिंचाई करनी होगी?
0: ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम सिंचाई की बात करें, वैसे तो पर्वतीय क्षेत्रों में मक्का जो है खेती वर्षा के आधार पर होती है, लेकिन कुछ प्लेन क्षेत्र हैं

0: या घाटी के क्षेत्र हैं और
1: हम्म,
0: वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो, और बरसात नहीं हो पा रही है और पानी की कमी पड़ रही है फसल में, उससे मैं मुख्य रूप से जो हमारी दो क्रांतिक अवस्था है, एक तो कम से कम जब आप नरमजरी आते हैं और एक जब भुट्टे निकलते हैं उससे मैं जरूर सिंचाई करें तो आपकी जो पैदावार पे सूखे का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि मक्का के साथ हमारे किसान साथी अन्य भी फसलें लगाते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, तो इससे भी डबल फायदा हमारे किसान साथी ले
0: बिल्कुल,
1: सकते
0: बहुत
1: हैं।
0: इससे बहुत फायदा होता है और खास तौर से मक्का, जब आप मक्का लगा रहे हैं अगर इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम किस सीजन में मक्का लगा रहे हैं। जैसे मक्का हम बरसात में लगाते हैं तो बरसात में हम मक्का के साथ में मूंग लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, हम उड़द लगा सकते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो जो ये हमारी जो दाल वाली फसलें हैं
1: जी
0: ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर कर देती हैं, इससे हमारी जो नाइट्रोजन है वो हमारी मक्का को मिल जाती है और मक्का के साथ साथ हमारी दूसरी फसलों का प्रोडक्शन भी हो जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, बहुत ही विस्तार से आज आपने हमारे किसान साथियों को जानकारी दी कि किस तरह से अगर मक्का से अच्छा उत्पादन लेना है तो कैसे इसकी खेती करनी है, किन बातों का हमारे किसान साथियों को ध्यान रखना होगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता, विषय था मक्के की उन्नत खेती। इस भेंट वार्ता में डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी से बात कर रहे थे हमारे साथी विकास चमोले जी। श्रोताओं, पशु आहार प्रबंधन एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका है जिसके तहत पशुओं के स्वास्थ्य, वृद्धि और दुग्ध उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उन्हें आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में दिए जाते हैं। पशु के आहार में सूखा चारा, हरा चारा और दाने का उचित मिश्रण बेहद जरूरी है, होना चाहिए। कुल आहार का लगभग एक तिहाई हिस्सा हरा चारा होना चाहिए जो विटामिन और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। भूसा, सूखी घास फाइबर की पूर्ति के लिए बेहद जरूरी है। अनाज, खली और चोकर का मिश्रण पशु की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। श्रोताओं, पशुओं की प्रजनन क्षमता और दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए आहार में मिनरल मिक्सर और नमक बहुत महत्वपूर्ण है। कुल दाना मिश्रण में 2% मिनरल मिक्सर और 1% साधारण नमक अवश्य मिलाएं। एक व्यस्क दुधारू पशु को प्रतिदिन लगभग 30 से 50 ग्राम मिनरल्स मिक्सचर देना जरूरी है। पशुओं के शरीर और दूध का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है। कम पानी पीने से दूध उत्पादन और पाचन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, पशुओं को 24 घंटे स्वच्छ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। पोषक तत्वों की कमी वाले भूसे की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए यूरिया उपचार एक बेहतरीन विधि है। श्रोताओं, ये थी पशु आहार प्रबंधन की जानकारी। अब समय है आपके मनोरंजन का, सुनते हैं अगला लोकगीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
3: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
4: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
5: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
6: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.

किसान साथियों, कार्यक्रम में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपके पास खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी है तो आप हमें पत्र जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, पिन 248001। किसान साथियों, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है जगतकृषि@gmail.com। अब कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 होने को हैं और अब वक्त है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ मी ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल, पौड़ी गढ़वाल में 110 करोड़ रुपयों है बाकी, 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून के कलकत्ता रेड रोड पर आयोजित होल। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोरी महाराजा कैंची धामक स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उत्साह दगड़ मनाई गयो। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट UG पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करें। और अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज पौड़ी गढ़वाल में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव में 110 करोड़ रुपयों है जाद लागत तक 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। यो मौक पर उनलको की यो परियोजनाएं क्षेत्रक आधारभूत ढांचे के मजबूत बनुनक दगड़ दगड़ आम जानेनक जीवन में सकारात्मक बदलाव लूण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल। मुख्यमंत्री कंडोलिया महोत्सव के पौड़ीक सांस्कृतिक पछाण और जन भागीदारी उत्सव बताबेर को की यो स्थानीय कला संस्कृति प्रतिभाओं के मंच प्रदान करणक दगड़ दगड़ पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करल।
2: कंडोलिया महोत्सव हमारी लोक विरासत लोक संस्कृति का बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, हमारे बच्चों को भी आगे आने का अवसर मिलता है, हमारी विरासत भी आगे बढ़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास, उस मंत्र को भी ये साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम करता है। और इससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ की अन्य गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को लोगों को भी जो है इसमें सहभाग करने का अवसर मिलता है।
1: यो बीच मुख्यमंत्री जिला विज्ञान संग्रहालय श्रीनगर में विकसित आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण करो। उनलको की यो संग्रहालय केवल एक प्रदर्शनी जग नहीं बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आधुनिक विज्ञान शिक्षा नवाचार और अनुसंधान के प्रोत्साहित करण वाले महत्वपूर्ण केंद्र होल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज नगला तराई स्थित एक खेत में टेलर चलाबे जुताई करे और पोषक प्राकृतिक खाद डालबे जैविक और पारंपरिक खेती के बढ़ावा देनक संदेश दियो। यो मौक में मुख्यमंत्री गाड़ में मेहनत करण वाल किसानों परिश्रम और कृषि परंपराओं के महत्व के रेखांकित करो। उनलको की खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधारशिला छू। श्री धामिल को की आधुनिक तकनीकक दगड़ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के अपना बेर खेती जद समृद्ध टिकाऊ और पर्यावरणक अनुकूल बनाई जा सको। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठुल आयोजन लिजी औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ करो। आयुष मंत्री प्रताप राव जाघावल नई दिल्ली में संवाददाताओं के बताए कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कलकत्ता रेड रोड में आयोजित करी जाल। उन्होंने बताए कि यो मौक पर 45 मिनट तक योग प्रोटोकॉल आयोजित करी जाल। श्री जाघावल को कि योग मनखियों हर उम्र में स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर और मानसिक रूपल मजबूत जीवन जीण में महत्वपूर्ण भूमिका निभू।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: यो साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय छू स्वस्थ जीवन के लिए योग।
3: इस वर्ष देश भर में
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपुलोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Facebook पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराजा कैंची धामक आज स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह दगड़ मनाएगी। यो मौक पर आयोजित ठुलम्याल में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रहे। जिला प्रशासन के अनुसार सुगम दर्शन, बिना रोक टोक यातायात और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कारण श्रद्धालु बगैर कोई कठिनाई बाबा नीम करोली महाराजा के दर्शन कर रहे। जिलाधिकारी ललित मोहन रयालल बताए कि कैंची धामक पावन प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन सुनिश्चित
5: प्रातः 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और 800 से ज्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें रोडवेज, केमू और निजी क्षेत्र की बसें सकल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं, छोटे मैक्स वाहन भी हैं, उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुँचाने के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं में बढ़ चढ़ कर उत्साह है। कतार में शांतिपूर्वक वो अपना आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा हर प्रकार की दर्शन से लेकर महाप्रसाद वितरण तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग मार्ग हैं।
1: वहीं सोमवती अमावस्या पावन मौक पर आज हरिद्वार में आस्था जन सैलाब उमड़ पड़ो। अधिमास में पड़न वाली विशेष सोमवती अमूस पर ठुल संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी दगड़ अलग अलग गंगा घाटों पर पूजिन और पवित्र गंगा में नैबेर पूज पाठ और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करिन। स्नान पर्व दौरान पूर्जाग में श्रद्धा और भक्ति वातावरण बनी रहो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTL स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए नीट UG पुनः प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर हालिन। प्रवेश पत्र NTA आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN बठे डाउनलोड करी जा सकनन। यो परीक्षा 21 जून के दोपहरी में 2 बजे बठे ब्याव 5:15 जाने होली। यो बीच NTL विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करण है पहली डबल वापस करण रख लीजिए। अपूर्ण बैंक खातों के विवरण सत्यापित करण रख लीजिए। परामर्श दे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दी गई निर्देशों को ध्यानल पढ़ने के लिए सलाह दी गई। पौड़ी गढ़वाल घुड़दौरी स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए BCA पाठ्यक्रम शुरू करने घोषणा करी। जैल प्रदेशक युवाओं के कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस उभरते क्षेत्र में कैरियर बनुनक अवसर मिलल। संस्थानक निदेशक डॉक्टर BK बंगाल बताए कि यो पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्गक दगड़ दगड़ कला वर्गक विद्यार्थी ले इंटरक परीक्षा पास करणक बाद प्रवेश ले सकल। उनल को कि BCA पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के रोजगार परक तकनीकी कौशल प्रदान कराल और उच्च शिक्षा, उद्यमिता व स्टार्टअप क्षेत्र में नई अवसर उपलब्ध कराल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूर्व हुणक मौक पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में सरकारक उपलब्धियों के जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने। यही क्रम में आज हरिद्वार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकारल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजल केंद्र सरकारक 12 सालों प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दे। श्री महाराजल को कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पछिल 12 सालों के दौरान भारत तल विकास, सुशासन और जन कल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करी। उनल को कि केंद्र सरकारक बानी बानी योजनाओं का लाभ समाजक सपे वर्गों जाने पुजूण छु। जैल गरीबों, किसानों, श्रेणियों और युवाओं और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आई और दगड़े राज्य में पर्यटन गतिविधियों और रोजगारक मौक मिले वृद्धि भी। उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशालक दर्शन करीन। यो मौक पर श्री अंबालीन धामक विकासक और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपयों की धनराशि दान स्वरूप प्रदान करी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल पौड़ी गढ़वाल में 110 करोड़ रुपयों है बाकी 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून के कलकत्ता के रेड रोड पर आयोजित होल। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज कैंची धामक स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उत्साह दगड़ मनाई गयो। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NEET UG पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करीन। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यों खत्म हूँ। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 हो रहे हैं, पेश है फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में, और सुनेंगे फिल्म संगीत में ये पहला गीत जिस गीत को संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने और आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म है आ गले लग जा।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:45 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत फिल्म हसीना मान जाएगी से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है अख्तर ने और संगीत बद किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 होने को है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं आरण्य देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण।
1: नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून के विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 वर्ष उत्तराखंड में कृषि और औद्योगिकी को मिलती नई गति में मैं हूं आपके साथ रागिनी बिंजोला।
2: और मैं प्रियंका मलिक आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में विकास, सुशासन और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा की जा रही है। इन 12 वर्षों के दौरान देश के अनेक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं।
3: उत्तराखंड भी इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। सड़क, रेल और हवाई संपर्क के विस्तार से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पर्यटन को बढ़ावा, औद्योगिक निवेश और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग तक राज्य में विकास की नई तस्वीर उभर कर सामने आई है।
2: और इन्हीं बदलावों की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद। प्रदेश के प्रवेश द्वार के रूप में पहचान रखने वाला ये जिला कभी मुख्य रूप से कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में यहाँ उद्योग, कृषि, शहरी विकास और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज उधम सिंह

0: कर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख जिलों में शामिल है।
1: तो श्रोताओं, आइए जानते हैं कि पिछले वर्षों में उधम सिंह नगर ने विकास की दिशा में कैसी यात्रा तय की है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में स्थित उधम सिंह नगर जनपद लंबे समय से कृषि उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है। उपजाऊ भूमि, मेहनतकश किसान और अनुकूल जलवायु ने इस जिले को प्रदेश का अन्न भंडार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पिछले लगभग एक दशक में जिले की विकास यात्रा ने एक नया ही मोड़ लिया है।
0: आज उधम सिंह नगर केवल कृषि प्रधान जिला नहीं बल्कि औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। बढ़ती आबादी, विस्तारित शहर, नए औद्योगिक प्रकल्प और किसानों की आय में वृद्धि इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर को प्रस्तुत करता है।
2: उधम सिंह नगर के मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर विकेश कुमार सिंह यादव का कहना है कि विकास के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है।
3: देखिए, अगर हम 14-15 को एक आधार वर्ष मान लें तो इधर हम देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे कृषक की वार्षिक आय जो 77,000 रुपया थी, वो अब बढ़ के 2,69,000 रुपये हो गई है, मतलब 350% हो गई है। और इसका मूल कारण ये है कि जैसे पीएम किसान सम्मान निधि में 80,000 किसानों को लगभग 352 करोड़ रुपए दे चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम धान की उत्पादन उत्पादकता की बात करें तो क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि हुई है, उत्पादन में 24% की वृद्धि हुई है और उत्पादकता में 18% की वृद्धि हुई है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में हमारा 2-3% लगभग क्षेत्रफल बढ़ा है, 7.45% उत्पादन बढ़ा है और 24.42% उत्पादकता बढ़ी है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं कल्याणकारी किसानों के लिए चल रही हैं उनका है। हमारे पास कस्टम हायरिंग सेंटर जनपद में एक भी नहीं था 14-15 से पहले, आज की डेट में हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर 302 हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। तो कुल मिला के जो वार्षिक आय है वो किसान की हमारी लगभग 350% हो गई है, 3.5 गुनी भी बढ़ गई है।
1: वहीं वर्ष 2011 की अगर जनगणना की बात की जाए तो जिले की आबादी लगभग 16,49,000 थी। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 तक ये संख्या बढ़कर 22 से 23 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। इसके साथ ही शहरीकरण की गति भी तेज हुई है। रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा और सितारगंज जैसे शहरों में नई आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। नगरों के लिए नए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किए गए हैं।
0: उधम सिंह नगर की विकास यात्रा में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। जिले में ऑटोमोबाइल, FMCG, फार्मा और इंजीनियरिंग क्षेत्र की अनेक इकाइयों ने निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। पंतनगर और सितारगंज औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं।
1: खुरपिया फार्म क्षेत्र में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित की जा रही स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी इस दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। लगभग 6180 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना से हजारों रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।
4: उधम सिंह नगर जिला उद्योग महाप्रबंधक विपिन कुमार का कहना है कि क्षेत्र में नई उत्पादन इकाइयों के लगने से रोजगार के भी नए अवसर सृजित हुए हैं।
5: विगत 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में हमारा उधम सिंह नगर जनपद जसपुर से खटीमा तक जैसे लगता है और बॉर्डर जिला भी है हमारा, लगभग 7 से 8 हजार इकाइयों की स्थापना हुई है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा है, सर्विस सेक्टर भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा इसमें 1500 करोड़ से अधिक का इसमें इन्वेस्टमेंट शामिल था जो कि जनपद के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिकी मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। जब इसके साथ साथ ही इसमें जो अन्य बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि 50 से 60 हजार लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें 70% रोजगार हमारे जनपद के, हमारे प्रदेश के लोग ही हैं जो आज से पूर्व पहले बाहर दिल्ली में जॉब करते थे या बाहर अपना प्रयास करते थे एजुकेशन लेने के बाद। इसमें सरकार द्वारा किए गए बड़े प्रयासों में 2018 में डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर सबमिट कराई गई माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट हुआ। तो सरकार के द्वारा जो ये प्रयास उद्योग जगत के लिए किया गया है तो उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आम जीवन के जीवन में भी बदलाव आया है और एक ये बड़ा बदलाव है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि हम एम्प्लॉयमेंट हर राज्य का मुद्दा होता है, हर जिले का मुद्दा होता है, तो आपको लोकल में ही अगर कोई रोजगार देने के लिए आपको अगर संसाधन उपलब्ध हो तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी सरकार की नहीं हो सकती, जो कि हुई है।

0: थैंक यू। सारा ये प्रयास हुए हैं लोकल क्षेत्र में ही, बड़े बड़े ग्रुप आए हैं, एस्कॉर्ट फार्म लगा है काशीपुर में, ईएमसी पार्क है, अरोमा पार्क है, खुरपिया फार्म स्थापित हो रहा है सितारगंज, सितारगंज औद्योगिक क्षेत्र हमारा है, पंतनगर है। इन क्षेत्रों को ये डेवलप होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा जो युवा है, जो पहले बाहर नौकरी अन्य राज्यों पर निर्भर होता था, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर जाता था, आज उसको यही लोकल में, हमारा उधम सिंह नगर के ही इंडस्ट्रियल एरिया में, इसके अलावा हरिद्वार में, तो ये एक सर्वांगीण विकास कहा जाएगा इसको। तो पलायन पर रोक लगाने के लिए ये बहुत बड़ा भागीरथ प्रयास है। धन्यवाद।
1: इसके अलावा अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, नए औद्योगिक एस्टेट, प्लास्टिक पार्क और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जैसी परियोजनाएं भी जिले के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
2: जी, और कृषि आज भी उधम सिंह नगर की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग, बेहतर बीजों, सिंचाई सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि दर्ज की गई है।
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के लगभग 80,000 पंजीकृत किसानों को अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 352 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में धान की उत्पादकता में लगभग 19% और गेहूं की उत्पादकता में लगभग 25% तक की वृद्धि दर्ज की गई है।
2: कृषि क्षेत्र में हुए बदलाव का प्रभाव किसानों की आय पर भी दिखाई दे रहा है। आधुनिक खेती, नई तकनीकों और योजनाओं के लाभ से किसान अधिक उत्पादन और बेहतर आय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
1: उधम सिंह नगर की विकास यात्रा यह दर्शाती है कि जब कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं एक साथ आगे बढ़ती है तो विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक जरूर पहुंचता है। आज ये जिला उत्तराखंड के आर्थिक और औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है।
2: जी हाँ, और उधम सिंह नगर की ये कहानी केवल एक जिले की कहानी नहीं है श्रोताओं, बल्कि विकास, सुशासन और जन कल्याण की उस व्यापक सोच का उदाहरण है जिसमें आधारभूत संरचना, उद्योग, कृषि और आम जनजीवन को समान महत्व दिया गया है।
1: बिल्कुल, बढ़ता औद्योगिक निवेश, मजबूत होती कृषि व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और तेजी से विकसित होता शहरी ढांचा आज उधम सिंह नगर की नई पहचान बन चुके हैं। यही बदलाव उत्तराखंड के समग्र विकास की तस्वीर को भी मजबूत करते हैं।
2: श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ आकाशवाणी देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 वर्ष उत्तराखंड में कृषि एवं औद्योगिकी को मिल रही नई गति में मैं रागिनी बिंजोला और मेरी सहयोगी प्रियंका मलिक को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे आरुणी देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर रात्रि के 8 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री ब्रजेश यादव से हिंदी वार्ता। विषय है विष्णु प्रभाकर के साहित्य में राष्ट्र प्रेम और मानवीयता।
4: आज हम हिंदी साहित्य के उस रचनाकार को समझेंगे जिनकी कलम ने देशभक्ति को नारे से उठाकर इंसानियत तक पहुंचाया। विष्णु प्रभाकर, जिनका जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्हें 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए। उन्होंने 80 से ज़्यादा रचनाएं दीं, उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, बाल साहित्य और अनुवाद। विष्णु जी गांधीवादी विचारधारा से गहरे जुड़े थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को नज़दीक से देखा, इसलिए उनके साहित्य में दो स्वर लगातार गूंजते हैं, पहला राष्ट्रप्रेम और दूसरा मानवीयता। राष्ट्रप्रेम जो कि मिट्टी, संस्कृति और आज़ादी का प्रेम को समाहित करता है, जबकि मानवीयता हर इंसान की गरिमा, करुणा और समानता का भाव को समाहित करता है। उनका मानना था राष्ट्र तब तक राष्ट्र नहीं बनता जब तक उनका हर नागरिक इंसान न बन जाए। भागवन राष्ट्र प्रेम मिट्टी से उपजी भावना। विष्णु प्रभाकर का राष्ट्र प्रेम भाषण वाला राष्ट्र प्रेम नहीं था, यह कर्तव्य वाला राष्ट्र प्रेम था। इसके चार आयाम हैं। पहला आयाम स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, जो कि उपन्यास अर्धनारीश्वर में दिखता है। 1857 से 1947 तक का 90 साल का सफ़र, इसमें क्रांतिकारी भगत सिंह की राह भी है और गांधी जी की अहिंसा भी। विष्णु जी ने दिखाया कि आज़ादी एक तरफा नहीं थी, जिसमें कुछ मुख्य बातें क्रांतिकारी चंद्रशेखर का बलिदान और गांधीवादी राम कुमार का रचनात्मक काम। लेखक दोनों का सम्मान करते हैं। आम लोगों का योगदान, एक विधवा अपनी शादी के जेवर बेचकर तिरंगा खरीदती है, एक किसान लगान नहीं देता तो कोड़े खाता है, यही अनसंग हीरो असली देशभक्त हैं। प्रसिद्ध पंक्ति, देश की आज़ादी तलवार से नहीं चरखे और चरित्र से आएगी। यहाँ राष्ट्र प्रेम, त्याग, धैर्य और रचनात्मक कर्म तीनों को समाहित करता है। दूसरा आयाम विभाजन की त्रासदी और एकता का आग्रह, जो कि उपन्यास आवर्त में दिखता है। 1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर विष्णु जी ने खून खराबा कम और रिश्तों को टूटने पर ज्यादा जोर दिखाया। एक ही गांव में 200 साल से साथ रहने वाले रहीम चाचा और पंडित हरिशंकर, दंगे के बाद दोनों एक दूसरे को पराया कहने लगते हैं। लेखक पूछता है, सीमा किसने खींची, अंग्रेजों ने कागज पर या हमने दिलों पर? उपन्यास का अंत आशा से होता है। दंगों के बाद भी कुछ लोग इंसानियत नहीं छोड़ते। संदेश क्या कहता है कि भारत की आत्मा गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ राष्ट्र प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। तीसरा आयाम गांव गरीब का भारत। कहानी धरती अब भी घूम रही है, खिलौने और एक औरत की जिंदगी। विष्णु जी दिल्ली में रहते थे, पर उनकी कलम हमेशा गांव में थी। उनके नायक आईपीएस अफसर नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी हैं, जो बिना तनख्वाह के बच्चों को पढ़ाते हैं। डाकिया है जो बाढ़ में चिट्ठी पहुंचाता है, क्योंकि देश की खबर रुकनी नहीं चाहिए। किसान है जो सूखे में भी बीज बोता है, क्योंकि धरती का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। उनका राष्ट्र प्रेम शहरी चमक में नहीं, गांव की मिट्टी की खुशबू में है। चौथा आयाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो कि नाटक समाधि और सत्ता के आर पार में दिखता है। विष्णु जी ने पश्चिमी अंधानुकरण का विरोध किया, पर उनका विरोध नफरत से नहीं आत्मगौरव से था। वे लिखते हैं, पश्चिम से विज्ञान लो पर जड़ें अपनी मिट्टी में रखो। जो अपनी भाषा, कला, त्यौहार भूल गया वह राष्ट्र कैसे बचा पाएगा। दूसरा भाग मानवीयता साहित्य की धड़कन है। विष्णु जी बार बार कहते थे, मैं पहले इंसान हूँ फिर भारतीय हूँ। जो इंसान को प्यार नहीं कर सकता वह देश को क्या करेगा। मानवीयता के चार स्तंभ उन्होंने दिखाए। स्तंभ पहला शोषित पीड़ित के साथ खड़े होना, जो कि कहानी धरती अब भी घूम रही है से है। दलित किसान सुखिया जमींदार से लड़ता है, अंत में वह मरता है, पर मरते मरते अपने बेटे से कहता है, बेटा झुकना मत, धरती अब भी घूम रही है, अन्याय हमेशा नहीं रहेगा।

0: दहेज पर सवाल उठाती है। नायिका मृणाल कहती है, मैं किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए पैदा हुई हूँ। विष्णु जी ने स्त्री को देवी या अबला नहीं बनाया, उसे एक आम इंसान बनाया, कमज़ोर भी और मजबूत भी, यही उनकी मानवीयता है। स्तंभ 3, धर्म जाति से ऊपर मनुष्य। आवर्त में दंगे के समय एक हिंदू परिवार मुस्लिम पड़ोसी को अपने तहखाने में छुपाता है। जो लोग बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद चिल्ला रहे हैं, वही रात को उस मुस्लिम परिवार के लिए खाना भी भेजते हैं। लेखक का यहाँ पर सवाल है कि जब रात को इंसान इंसान के काम आ सकता है, तो दिन में दुश्मन क्यों बन जाता है? उनकी जीवनी आवारा मसीहा शरदचंद्र में भी वे लेखक को शराब पीने की कमजोरी को छुपाते नहीं, पर उसकी करुणा को 100 गुना बढ़ा करके दिखाते हैं। स्तंभ 4, प्रकृति और जीवों के प्रति करुणा। कहानी पिंजरे का पंछी में एक बच्चा पिंजरे का तोता आज़ाद करता है। लेखक कहता है, जो परिंदे की कैद नहीं सह सकता, वह इंसान की कैद कैसे सहेगा? उसकी मानवीयता सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं, पेड़, नदी, जानवर सबके लिए जगह है। संगम बिंदु, जो कि राष्ट्र प्रेम और मानवीयता का समावेश दिखाता है। विष्णु प्रभाकर की मौलिकता यही है कि उन्होंने इन दोनों को कभी अलग नहीं किया, जो कि एक उदाहरण के तौर पर नाटक डॉक्टर में देख सकते हैं। प्लेग फैलता है, सरकारी डॉक्टर शहर छोड़कर भाग जाता है, पर गांव का कंपाउंडर रामदास बिना दवा बिना सुरक्षा के सबका इलाज करता है। उससे पूछा जाता है, तुम किस धर्म के हो? वह कहता है, इंसानियत के। यही है विष्णु जी का आदर्श नागरिक, देशभक्त भी और इंसान भी। इसको एक और उदाहरण के तौर पर अर्धनारीश्वर का अंत में भी देख सकते हैं। आज़ादी मिलती है, पर लेखक जश्न नहीं मनाता। वह दिखाता है कि एक विधवा अब भी भूखी है, एक किसान अब भी कर्ज में है। एक यह संदेश देता है, झंडा तो फहर गया, अब देश बनना बाकी है।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री बृजेश यादव से हिंदी वार्ता। विषय था विष्णु प्रभाकर के साहित्य में राष्ट्र प्रेम और मानवीयता। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर रात्रि के 8:10 हो रहे हैं। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं सरकार के 12 साल।
2: विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
4: धन्यवाद।
3: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
4: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं

0: क्या कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना, जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
0: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ DUSIM के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, DUSIM के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है कि जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है, या ये

0: आपके रीच में है?
1: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर। तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम है, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रेवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
0: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
1: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
0: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
1: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा, इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी, जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-05 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करने, केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं।
0: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
1: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपने अपने स्कीम भेज रहे हैं। प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
0: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
1: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
0: जी।
1: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 पहले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा है कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में फौरन बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज लेने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
1: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोबा की हुई है, 2 दिन खत्म हुआ, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई एक कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
0: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
1: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
0: जी,
1: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
0: जी,
1: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम 0 बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही 0 आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा है कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो 0 है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाए,
0: इनकम होने लगे।
1: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए, ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
0: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
1: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं कर पा।
0: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: This is Akashvani. In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governors didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose. Rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit. The private sector has a trust deficit. Non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society, but more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, you know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents

0: कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, या अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
8: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज,

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में ये पहला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म आजा सनम से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अर्जुन पौडवाल ने।

श्रोताओं सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और बोल है इरशाद कामिल के। फिल्म है एक्शन रीप्ले।

श्रोताओं, अभी आप ये गीत सुन रहे थे अरिजीत सिंह और मेहंदी हसन की आवाज़ में फिल्म हैदर से। इस गीत को बोल दिए थे गुलजार ने और विशाल भारद्वाज ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 9:46 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत संदीप बत्रा की आवाज में, और इस गीत को संगीत दिया है राशिद खान ने।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:53 हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। फिल्म है जब वी मेट।

श्रोताओं, आइए सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत। फिल्म कभी अलविदा ना कहना से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

रात के 10 हैं बजे, रात ने ली है अंगड़ाई, आपकी फरमाइशों की डोली अब है सजाई, जो गीत दिलों को भाए वो नगमा याद आए, बजाएंगे आज वही जो आपने ही फरमाए। जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट सोनिया खुशाल। तो जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और इस मौसम के मज़े भी ले रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जी हाँ श्रोताओं, ये वही कार्यक्रम है जिसमें सुनवाए जाते हैं आपको आपके पसंदीदा गीत आपके नाम और पतों के साथ। तो जी हाँ, जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और व्हाट्सएप कर दीजिए हमें आपके फरमाइशी गीत। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। जी हाँ श्रोताओं, हमारे कुछ नियमित श्रोता हैं जो हम संग जुड़ चले होते हैं वक्त के रहते ही। जी हाँ, घड़ी की सुई अब हमें 10:02 दिखा रही है, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं, नियमित श्रोता जो अक्सर अपने इस कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, वो ठीक घड़ी की टिक टिक की 10 के साथ ही हम संग जुड़ जाते हैं। तो जी हाँ श्रोताओं, सुनेंगे कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ हैं जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशान मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार। और साथ ही हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं हमारे साथ, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं आप जुड़े हुए, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। और इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे अगले श्रोता हैं, आप जुड़े हैं मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम प्रकाश सुरलकर। तो आप सभी की फरमाइश पर सुनेंगे कार्यक्रम का ये पहला गीत।

तो आइए श्रोताओं सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, जिसके फरमाइश करता हमारे साथ हैं सनावर से शेख मूसा मोहसिन, और हमारे अगले श्रोता हैं तेलंगाना से चौटुलपल से कस्तूरी रामुडू वुमो देवी और प्रभुदी नारायण, और साथ ही चक्राता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश और रानी। और अगर हम बात करें हमारे अगले श्रोताओं की, तो आप हैं कस्बा उगेदी बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक कुमार, निर्भया गुप्ता। जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से है लाल गिरी।

से जुड़े रहते हैं और अपने परिवार के साथ हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हमारे साथ हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा। खाला पार मुजफ्फरनगर से हैं साहिना, प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब और मसरूर अली। तो श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोता, हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं किशन वंजनी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी फरमाइश पर सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। साथ ही जिला अमरोहा नई बस्ती फतेही खालसा से हमारे साथ हैं बहारुल हसन।

सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, नव्या सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुरेश चौहान, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं, वो है कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत यूपी से हैं, आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, आसिफ सादिक अली खान और सारिका अली खान। भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार और साथ ही है गांव जाखौद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक और शमशूल कमर राही, साहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, गंज डुंडवारा से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। तो श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10:18 हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का। जी हाँ श्रोताओं, ये वही कार्यक्रम है जिसका आप करते हैं बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि इसमें सुनवाए जाते हैं आपको आपके पसंदीदा गीत, जिसमें हम लेते हैं आपके नाम और आपके पते भी। तो जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त और होस्ट सोनिया खुशाल। तो जी हाँ श्रोताओं, सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, करणवीर हाउस भूचो कैच कैंचिया भटिंडा पंजाब से। आप हमारे साथ हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत। और झज्जर हरियाणा से हमारे साथ हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। और मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकाक फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। और अगर हम बात करें साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे श्रोता की, तो आप हैं वाइट फील्डिंग बेंगलुरु से हमारे साथ हैं भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आराध्या सुरलकर। तो जी हाँ श्रोताओं, आप हमें धन्यवाद लिखते हैं, लेकिन जी हाँ श्रोताओं, शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का, क्योंकि जब आप हैं तो हम हैं, आपके साथ ही हमारा ये सफ़र बहुत रंगीन होता है। और आपके पसंदीदा गीत जो आपके दिलों में गूंजते हैं, वो नगमे अगर कहते हैं ना कि FM में अगर सुनाए जाते हैं तो उसके बात ही कुछ और होती है, तो उसका मज़ा ही दोगुना हो जाता है। तो पटियाला रोड गंज डुंडवाना उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा और एके रही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी हमाद जलीम। आप जुड़े हैं हमारे साथ तहसील रोड गंज डुंडवारा से, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही गांव राय खाना जिला बठिंडा पंजाब से हैं परमजीत सिंह सोनी, करण सोनी, रानो, दीपू, वीरपाल, कुलदीप। तो जी हाँ श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला गीत। और नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हासमी, गुल्लाज सलमा और असद अरहाम, साथ में हैं मोहम्मद आलम हासमी।

गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, और साथ ही हमारे साथ जो हमारे अगले श्रोता हैं आप हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से हमारे साथ जो हमारे अगले श्रोता हैं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं हमारे साथ प्रेम और ललिता जी, आप जुड़े हैं, धन्यवाद आपका तहे दिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरठ कैंट से हमारे साथ हैं दिग्दर्शन कविता, अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। गुलरेज सिद्दीकी, शाद मानी सिद्दीकी, अनन सिद्दीकी, हसन सिद्दीकी, गांव सपाला खत्री, देवबंद सहारनपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, शुक्रिया श्रोता आप सभी का। और सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जसपाल यादव, विनोद पुरी आप हमारे साथ जुड़े हैं। अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से जुड़े हुए हैं। जी हाँ श्रोताओं, अक्सर हम मैं अगर ये आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ तो उसमें अक्सर लिखा हुआ आता है कि आप हमारा नाम ज़रूर शामिल करें। जी हाँ श्रोताओं, आपका नाम शामिल करना ये हमारे लिए बड़े ही कहते हैं कि खुशनसीबी की बात है कि आप हमें मैसेजेस करते हैं और उनको हम शामिल करते हैं, और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमें सुनने वाले हर एक श्रोता का नाम हम कार्यक्रम में ले सकें और उनको उनके पसंदीदा गीत सुनवा सकें। और साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं हमारे साथ गुरुदेव सिंह बटकोट, आप हमारे साथ जुड़े। और साथ ही हैं हमारे साथ कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े, आप जुड़े हैं शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ परारी से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो राजेश खन्ना चिन्ना पासी और सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना, अनी प्यारा बिल्लू आप हमारे साथ जुड़े तेलंगाना से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सुनेंगे आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। और साथ ही ऊपरकोट जिला मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमारे साथ हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

श्रोताओं, देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हैं मिलन विहार जीएमएस रोड से, आप हैं हमारे साथ राजेश्वरी सागर, और आपकी फरमाइश पर सुनेंगे बॉर्डर का ये अगला गीत। और साथ ही इसी गीत के लिए हमारे साथ हमारे अगले फरमाइश करता हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फरहा, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, और साथ ही हमारे अगले श्रोता हैं गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इर्म गुड़िया, सोएब खान, और सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जसान वारसी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नहावकर और निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, और मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपना तायड़े और आशीष मुरहरकर। श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला गीत, और इसी की रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी। शाही मार्केट सयोहार जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये है राजनगर कांति निकेतन, कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, संगम बिहार रतिया मार्ग नई दिल्ली से है रणधीर गुप्ता, धीरज गुप्ता, निश्चल गुप्ता, परिचय गुप्ता, शुभम और सुंदरम गुप्ता। तो आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म बॉर्डर से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में।

सोनू निगम और अलका याग्निक की इस मधुर भरी आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बॉर्डर से, और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और आज की होस्ट सोनिया खुकशाल। तो जी हाँ श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ हैं मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, और फाजिल्का पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टीवा नाशी खेड़ा, और साथ ही हैं हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं आप हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, वंडिंग खेड़ा पंजाब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ताज मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद साबिर राही, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे अगले श्रोता हैं आप हैं गांव व डागर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कर्मजीत कौर, पटेल नगर मलौट से हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर हम बात करें चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ

जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत। तो श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का यह अगला गीत गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से है, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु निधान खुराना।

सनावत से हमारे साथ हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना और साथ ही हमारे साथ हैं डबराली से, डबवाली से हमारे साथ राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और जयराम सिंगड़कर और दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं जिला यवतमाल से हमारे साथ हैं आप और साथ ही हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक और लुबना और यश मंसूरी, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, कस्बा बराड़ा ज़िला अम्बाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, आप हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से और साथ ही हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज बाई ठाकुर, ईशर राज, पप्पू ठाकुर और जमशेदपुर रखाल पथ कदमा से हमारे साथ हैं कुमारी प्राची ठाकुर, देविका ठाकुर और मोना ठाकुर, साधना ठाकुर, बी के सूर्यवंशी। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी, अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के, आप हमारे साथ जुड़े हैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। तो श्रोता, आप सभी की फरमाइश पर सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला गीत और किशन वंजनी, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ श्रोता, आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत जलालाबाद शामली यूपी से है राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी, जिसान मंसूरी।

100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। रात्रि के 10:50 हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट सोनिया खुकशाल। तो जी हाँ श्रोताओं, सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ हैं दावली हरियाणा से जेके बकौलिया, सुनीता बकौलिया, संजय अनिल मीनू बकौलिया, और साथ ही हैं हमारे साथ हमारे अगले श्रोता नूर नगर गंज डुंडवारा से उज्मा शेख, सिफा शेख, रिफा शेख, और साथ ही हैं हनोई वियतनाम से हैं प्रोफेसर वसुधा ब्रजसेन और डॉक्टर स्वर्णलता युगेन। जलगांव जंक्शन से हमारे साथ हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। छत्तीसगढ़ परारी से हमारे साथ हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हमारे साथ हैं मास्टर अनिल, अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। और महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और बीपी कुलथे। और हमारे साथ जो हमारे अगले श्रोता हैं गांव गाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। एम फारूक शेख, समा परवीन शेख, साइमा फारूक सर, फराज शेख, गुलफराज शेख, बीबी मुस्कान, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत, विष्णु अग्रवाल जी, शेरकोट बिजनौर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो श्रोताओं, आज सुनते हैं कार्यक्रम में आप सभी की फरमाइश पर ये अगला गीत फिल्म नसीब से।

जी हाँ श्रोताओं, अगर हम बात करें कि नसीब में क्या है और क्या नहीं, ये तो भविष्य की गर्द में छुपा होता है, बस हमारे हाथ में होता है कर्म को करते जाना और आगे अपना सोचते रहना। कहते हैं ना कि बिना कर्म के फल की इच्छा करना तो व्यर्थ है, इसीलिए सिर्फ नसीब के भरोसे जीवन नहीं चलता, हमें काम तो करना ही होता है। और अगर हम बात करें कार्यक्रम में अगले गीत के फरमाइशकर्ता की, तो वो है राही नगर गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, साहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान और ताबिश खान। और साथ ही हमारे साथ है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। आप जुड़े हैं जैन मंदिर वाली गली कुरा वली से हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ जो हमारे अगले श्रोता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून चक्राता से निमिष और रानू, आप हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ जो हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं हमारे साथ नेहा और रितिका, आप हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। और नई दिल्ली से ही हमारे साथ हमारे जो अगले श्रोता हैं, आप हैं रानिश और राजू, और साथ ही हमारे साथ निमी गुड़िया। तो श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर सुनेंगे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। और साथ ही नई बस्ती गंज डुंडवारा से है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौफीद हाशमी और मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। तो आप सभी की फरमाइश पर सुनेंगे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर चुकी होती हैं कि समय हो चला है कि कार्यक्रम में आपसे इजाज़त लेने की, और इसी वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwari. The news read by Kiran Jha. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labor migration, digital technology and defense, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron welcomed the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile.